0: इजाजत हो तो सुना दूं।
1: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात। आज शनिवार 8 अगस्त 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 5 बज रही है।
4: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

Chillax with Radio Musty. A very good morning आप सभी को सुप्रभात। सैटरडे की सुबह है, 5:05 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती। मैं हूँ आपकी रिया आपके साथ और ये है आपका फेवरेट मॉर्निंग कंपेनियन, दैट इज चिलैक्स। जी हाँ, हम चिलैक्स लेकर आए हैं आपके लिए सुबह सुबह। वैसे सुबह का समय कुछ अलग ही होता है ना, अभी तो पूरी तरह से सभी लोग जागे भी नहीं है, सड़कें रिलेटिवली खामोश है, हवा में एक ठंडक सी है और इसी सुकून के साथ आज हम लेकर आए हैं एज यूजुअल आपके सदाबहार नगमे, वो गाने जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। वेल, कुछ गाने यादों के होते हैं, कुछ मोहब्बत के और कुछ बस दिल को हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। तो चाय हो या कॉफ़ी, बालकनी हो या किचन, या फिर आप अभी भी अपनी रजाई में कंफर्टेबल पड़े हैं, जी हाँ, अभी आप कंबल ओढ़ के बैठे हैं, वॉल्यूम तो आप थोड़ा सा बढ़ा ही दीजिए।

क्योंकि सैटरडे की इस खूबसूरत सुबह को हम शुरू कर रहे हैं उन्हीं एवरग्रीन आवाजों और उन्हीं हसीन धुनों के साथ है, जो कभी पुरानी नहीं होती। रेडियो मस्ती पर दिस इज योर रिलैक्स शो और साथ में ही खूबसूरत गानों का सिलसिला। चलिए पहला गाना तो हमने सुन ही लिया है और अभी सेकंड ट्रैक आप सभी के नाम डेडिकेट हम करते हैं। एंड यस, हम गाना डेडिकेट करते हैं हमारे सभी लिसनर्स के नाम जो सवेरे सवेरे मुंह अंधेरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशिंग यू अ लवली सैटरडे, ये शनिवार बहुत ही शुभ भय रहे, बस हम यही विश करते हैं। सो नॉट टू फॉरगेट आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस ऑन 5499 1294।

0: कुछ गाने ऐसे होते हैं, पहली धुन बजते ही हम किसी और समय में पहुंच जाते हैं। कभी स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, कभी वो पुरानी फैमिली गैदरिंग, कभी कोई दोस्त और कभी बस एक चेहरा। और सुबह के समय तो ये पुराने गाने और भी खूबसूरत लगते हैं। शहर अभी धीरे धीरे जाग रहा है, लेकिन यादें वो तो कभी सोती नहीं। तो अगर आपके हाथ में चाय का कप है उसकी एक सिप लीजिए, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो सफर एंजॉय कीजिए। जी हाँ, सवेरे सवेरे लोग ड्राइव करते हैं क्योंकि काम के लिए जाना पड़ता है, तो निकल पड़ते हैं सफ़र में और हम सफ़र में राही बनते चलते हैं। आपके लिए हम लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने। एंड वेल, जो लोग अभी तक बेड में है, कोई बात नहीं, सैटरडे है आज, वीकेंड टाइम बनता है, थोड़ा सा आराम और बनता है। और हम तो हैं ही आपके साथ है, चिलैक्स के साथ विद द ब्यूटीफुल सुरभि गाने, बस आपके नाम लेकर आते हैं ये ब्यूटीफुल गाने। और आशा करते हैं दैट इन गानों के साथ आपका दिन भी इससे भी खूबसूरत बन जाए। कुछ आवाज़ें, कुछ ध्वनि, कुछ कहानियाँ बहुत ही अलग होती है, जैसे कि हर दिन अलग होता है और हर दिन को अलग तरीके से जीना चाहिए, क्यों नहीं। तो अगर आपने कुछ प्लान किया है आज तो इसे आप निभाई, और अगर पूरा भी नहीं होता है कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। सो एंजॉय द मोमेंट और एंजॉय कीजिए रिलैक्स मेरे साथ रिया के साथ ऑन रेडियो मस्ती।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Tracks with Radio Musty.
1: सैटरडे है और सैटरडे की सुबह का अपना ही एक अंदाज होता है। मंडे से फ्राइडे तक का लाम के साथ भागना तो पड़ता ही है, लेकिन सैटरडे थोड़ा धीरे उठना, चाय को थोड़ा ज्यादा एंजॉय करना, खिड़की से बाहर देखना और बिना किसी जल्दी के एक अच्छा सा गाना सुनना, और अगर बैकग्राउंड में हो कोई सदाबहार गाने तो क्या कहना। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट तो नहीं है, म्यूजिक एक एहसास है। कभी दिल को सुकून देता है, कभी आंखों में चमक लाता है, कभी किसी पुरानी कहानी का एक पेज खोल देता है। तो आज सुबह का छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज के दिन थोड़ा स्लो हो जाए। हर चीज का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, हर काम अभी करना जरूरी नहीं, कभी कभी बस बैठकर एक गाना सुन लेना भी जरूरी है, और शायद इसलिए इसका नाम है चिलैक्स। सैटरडे मॉर्निंग पुराने गाने और आपके साथ, इससे बेहतर बिगिनिंग और क्या ही हो सकती है। चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर। सवेरे सवेरे हमारे साथ है जुड़ चुके हैं जयशन जी, गुड मॉर्निंग, आपको प्रणाम। आपके दोस्तों के नाम जयशन, आपके दोस्तों यानी तिम्बा, जीवन, उमिरन, अंगुठिया, आकाश, अरवन, रामदेव और मेविन, इन सभी के नाम नेक्स्ट ट्रैक जाता है। एंड धनेश्वर जी, आप हमारे साथ कनेक्टेड है, बॉम्बू से साथ निभा रहे हैं। आपकी प्यारी पत्नी सुनीता के नाम और पूरे दावे दोस्त परिवार के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करते हैं। वी ऑल्सो हैव अब्दुल और सायरा बानो जी जो हमारे साथ कनेक्टेड है, और अपने दोस्त नसरीन के नाम नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करना चाहते हैं। ऑलराइट, ज़रूर हम चलाएंगे नेक्स्ट ट्रैक उनके नाम। देवानंद जी, आप कैसे हैं? वेल, हैप्पी सैटरडे आपको भी हम विश करते हैं। कह रहे हैं कि अभी स्टिल ऑन बेड, वेरी कोल्ड एट प्रोविडेंस, वैसे वहाँ पर तो ठंड ही होती है। एंड आप डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट गाना फॉर बबीता, दर्शी, क्रिस्टी, नकुल एंड रिया। सो यस, इन सभी के नाम ज़रूर एक खूबसूरत सा गाना। एंड हमारे साथ है सात नाम मुकेश जुड़े हुए हैं और गर्मा गर्म चाय एंजॉय कर रही है। क्या बात, गर्मा गर्म चाय के साथ ये बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, दिन तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा आज। एंड वी हैव आकाश, चेतन, मनसुख, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। एंड आप अपने पूरे मनसुख परिवार के नाम नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करते हैं। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक और आकाश हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी। दीपक हमारे साथ कनेक्टेड है, वेल आप डेडिकेट करते हैं गाना फॉर ऑल लिसनर्स, स्पेशली फॉर आरजे विदिता, आरजे रिया एंड पूनम। सो थैंक यू फॉर दिस लवली मैसेज, और हमारे सभी जो

0: इस समय साथ दे रहे हैं एक्स्ट्रा का आपके नाम भी जाता है
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी, समय हो चला है आपको बताने का कि आज का दिन कैसे कटेगा, क्योंकि 6:45 बज रहे हैं। तो शुरू हम करते हैं।
2: एरीज मेष राशि।
1: आज का दिन नई उम्मीद और अच्छी सोच के साथ शुरू होगा। रुके हुए काम आज थोड़ी रफ्तार इनमें आ सकती है। घर वालों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। जल्दी में कोई फैसला लेने से बचना बेहतर होगा। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज का दिन सुकून और अपनों के साथ खुशी लेकर आएगा। काम से जुड़ी कोई अच्छी बात सुनने को मिल सकती है। पैसे के मामले में सोच समझ कर कदम उठाइए। पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बात हो सकती है। आज थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए भी निकालिए। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपका मन हल्का और खुश रहेगा। किसी अपने की बात आपको नई हिम्मत दे सकती है। काम में आपकी सोच की तारीफ हो सकती है। छोटी बात को लेकर ज्यादा सोचने से बचिए। आज हंसी और खुशी को अपने दिन का हिस्सा बनाइए। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज परिवार के साथ बिताया समय बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी पुरानी याद से चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। काम में धीरे धीरे सब कुछ आपके पक्ष में आएगा। किसी अपने से दिल की बात करने का मौका भी मिलेगा। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका हौसला और भरोसा दोनों मजबूत रहेंगे। किसी काम में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अपनों से मिलकर दिन और भी अच्छा बनेगा। खर्च करते समय थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आज जो भी करे दिल से करे। आज आपका लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज का दिन शांत और संतुलित रहेगा। अधूरा काम पूरा करने का अच्छा समय है। किसी करीबी से अच्छी बातचीत हो सकती है। अपनी बात रखते समय सामने वाले की भी सुनिए। आज छोटी खुशियों को नजरअंदाज न करें। लकी नंबर है आज आपका 7।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज का दिन रिश्तों में मिठास लेकर आ सकता है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बात हो सकती है। काम में

0: नया मौका सामने आ सकता है, फैसला लेने से पहले दोनों तरफ सोचना अच्छा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 6।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज किसी पुरानी परेशानी का हल न मिल सकता है। अपने फैसलों को लेकर भरोसा बनाए रखिए। घर में खुशी का कोई छोटा सा मौका आ सकता है। पैसे के मामले में संभल कर चलना बेहतर होगा। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। नई जगह जाने या कुछ नया करने का मन करेगा। काम में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। अपनों के साथ हंसी मजाक का मौका मिलेगा। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। आज किसी जिम्मेदारी को पूरा करके मन को सुकून मिलेगा। घर के किसी बड़े की सलाह काम आ सकती है। बिना जरूरत किसी बात को लेकर चिंता ना करें। आज धीरे चलना भी आगे बढ़ना ही है। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज का दिन नई सोच और नए विचार लेकर आएगा। किसी अपने से मिलकर मन प्रसन्न होगा। काम में आपकी नई सोच पसंद आ सकती है। सभी को पुराने काम को पूरा करने का अच्छा समय है। आज जो अच्छा है उसे लिए शुक्रगुजार रखिए। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: मन में सुकून और खुशी बनी रहेगी। आज किसी अपने की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है। काम में थोड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलेगी और अपने खर्च पर नजर रखना जरूरी रहेगा। आज दिल की खुशी को किसी खास इंसान के साथ बांटिएगा जरूर। लकी नंबर है आज आपका 3। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। लकी नंबर एंड आज आपके लिए हम बहुत कुछ लेकर आए हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम आशिता के साथ है संध्या। नमस्कार आपको आशिता।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम स्थानीय खबरों के साथ शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ खेल 2026 में मॉरिशस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, दो रजत और एक ब्रॉन्ज सहित कुल 4 पदक जीत कर 74 देशों में 15वां स्थान हासिल किया है। मंत्रिमंडल ने पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके ट्रेनरों को बधाई दी है, जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लुकोपियनो की टूर दे फ्रांस फैम में शानदार जीत की भी सराहना की है। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में उत्सर्जन 3.4% बढ़ा, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% की वृद्धि हुई है उसमें। मॉरिशस में उधर स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की गई है। इस साझेदारी के तहत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस में उन्नत चिकित्सा सेवाओं, प्रशिक्षण, विशेष उपकरणों और आधुनिक उपचार सुविधाओं के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस डिजिटल प्रक्रिया के जरिए कर्मचारी टैक्स बेनिफिट्स यानी कि लाभों का दावा कर सकते हैं, जिसमें डिपेंडेंस और शुरुआती 5,00,000 रुपए तक की थ्रेशहोल्ड पर टैक्स एग्जेम्पशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। और उधर एमटेल ने इस वर्ष की पहली छमाही में 320 मिलियन रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। बेहतर वित्तीय स्थिति, कम कर्ज और मजबूत

0: लाभ मार्जिन के साथ कंपनी ने शेयर होल्डरों के लिए डिविडेंड पेमेंट की नई व्यवस्था की घोषणा भी की है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो। चला बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर। मौसम का हाल आम हालत हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय और दिन के दौरान बादल घिराएंगे और विशेषकर ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। धीरे धीरे रात के दौरान आसमान में बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। कोहरा छाएगा और हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और पूर्व की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:54 पर।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: तो इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 PM.
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: Chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग वंस अगेन सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग जो हमारे साथ अभी कनेक्टेड हुए हैं। सुप्रभात, 6:10 हो चुके हैं, सैटरडे की सुबह ऑफिशियली जाग चुकी है और आप सुन रहे हैं चिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। पहला वो था थोड़ा या तो भरा सदाबहार नगमों के नाम, लेकिन अब थोड़ा सा रंग बदलते हैं, अब कुछ सॉफ्ट, कुछ रोमांटिक, सूदिंग, फील गुड मिक्स सॉन्ग्स हम चलाएंगे, वो गाने जो सुबह को एकदम हल्का, फ्रेश और खूबसूरत बना दे। सैटरडे है आज, तो आज कोई जल्दी नहीं। कुछ लोग अभी उठ रहे हैं, कुछ लोग चाय बना रहे हैं, कुछ लोग अपने घर के काम में लग गए हैं और कुछ लोग घर से निकल चुके हैं। क्या है कि वीकेंड के दिन भी काम करते हैं, तो आपको बुक आज कहते हैं। और चलिए इस सफर में हम चल पड़ते हैं और चलाते हैं का बहुत ही खूबसूरत गाना आप सभी के नाम। वीकेंड का पहला पूरा दिन है, उसे भाग दौड़ में नहीं, अच्छे एहसास के साथ शुरू कीजिए। मैं हूँ आपके साथ, आपके रिया, एंड आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस 5499-1294.
0: With Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Masti.
1: चलिए जी आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे बर्थडे मैसेजेस आए हैं एंड हमारे साथ लक्ष्मी हैं गुडलैंड से, कहती है कि आज आपके भाई किरण और बहन कविता का जन्मदिन है, 41 ईयर्स ओल्ड के हो गए हैं, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे इन दोनों को, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस कमिंग फ्रॉम पापा मामा, बहने हैं अंजू लक्ष्मी सेजल, ब्रदर इन लॉ विनय एंड संजीव, भांजे हैं साहिल अर्षद अकिल दिलेश, भांजियां हैं शिखा एंड दिया एंड ऑल्सो फ्रॉम लेट ब्रदर इन लॉ मून एंड लेट एल्डर ब्रदर केविन, बहुत याद करते हैं इन दोनों को और हैप्पी बर्थडे एक बार फिर आपको। एक और बर्थडे मैसेज, हैप्पी बर्थडे टू यांशी शिन्यू चामन, आप हैं कौची मिलती से और आज 18 ईयर्स ओल्ड के हो गए हैं, सो हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको यांशी, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस फ्रॉम पापा सूरज चामन, मामा रेशमा एंड द होल फैमिली एज वेल। एंड आज मौसी अनीता का भी जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे आपको मौसी अनीता, बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम बहने सुनीता रीता प्रेमिला भैया क्रीत गैसुआ एंड द होल पुअन परिवार जो है अभी दिख रहे होते। एंड एक बहुत ही स्पेशल बहुत ही प्यारी परी का आज जन्मदिन है, नाम भी उनका परी ही है, सो हैप्पी बर्थडे हम आपको विश करते हैं परी एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम मामा सोमा, पापा है साथ में आपके भाई है अवी एंड बहुत सारा प्यार आपके नाम आज डेडिकेट करते हैं इस गाने के साथ। द नेक्स्ट वन इट्स अ ब्यूटीफुल वन, अ क्लासिकल वन जो आप बहुत ही एंजॉय करेंगे, तो हमारे सभी लिसनर्स के नाम ये गाना जाता है।

शनिवार 8 अगस्त 2026 के इस प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। कॉमनवेल्थ खेल 2026 में मॉरिशस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, दो रजत और एक ब्रॉन्ज सहित कुल 4 पदक जीतकर 74 देशों में 15वां स्थान हासिल किया। मंत्रिमंडल ने पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके ट्रेनरों को बधाई दी, जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लुइपको पियना की टूर दे फ्रांस फॉर्म में शानदार जीत की भी सराहना की। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में उत्सर्जन 3.4% बढ़ा, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% की वृद्धि दर्ज की है। मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस में उन्नत चिकित्सा सेवाओं, प्रशिक्षण, विशेष उपकरणों और आधुनिक उपचार सुविधाओं के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस डिजिटल प्रक्रिया के जरिए कर्मचारी टैक्स बेनिफिट्स का दावा कर सकती है, जिसमें डिपेंडेंस

और शुरुआती 5 लाख रुपए तक की थ्रेश होल्ड पर टैक्स एग्जेम्पशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा।

0: विपक्ष नेता के तौर पर अपनी नियुक्ति के अगले ही दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि वे राष्ट्रसभा में जनता की आवाज बनना चाहते हैं। भले ही वे संसदीय छुट्टियों के दौरान अपना पद संभाल रहे हैं, लेकिन नए विपक्ष नेता के अनुसार उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निर्धारित किए हैं। हमारे सहयोगी मिगान पुरापनायकन ने कल दिन के दौरान पोर्टलिस में न्यूटन टावर की 5वीं मंजिल पर स्थित उनके दफ्तर में उनसे मुलाकात की। विवरण गीता स्नान का है।
1: अपने नए दायित्व की जिम्मेदारी संभालते ही चेतन बाबूलाल ने इसे पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निभाने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय सभा के स्टैंडिंग ऑर्डर्स उनके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे, ताकि वे सदन में जनता की आवाज प्रभावी ढंग से उठा
2: सकें। Travail de leader de l'opposition, les poupées, check and balances, l'autre bande décision qu'ils ont prend, l'autre bande mesure qu'ils ont peut prendre.
1: चुनाव क्षेत्र नंबर 10 मोताई ब्लॉन्च ग्रैंड साउथ ईस्ट से निर्वाचित चेतन बाबूलाल का कहना है कि वे पूरी विनम्रता के साथ अपनी नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
2: Beaucoup de dossiers qui prioritaire. Quand on get, par exemple, coup de la vie même, coup de la vie, une bien sûr, qui bande mesure capable amener pour soulager la population. Quand on get l'inflation, nous get des lots. Problème des lots, CIB, courant, électricité peut monter, puis aller même. Donc, il y en a beaucoup de dossiers, il y en a l'éducation.
1: 48 वर्षीय फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के सांसद इस पद को संभालने वाले 17वें नेता हैं। उनका कहना है कि वे विपक्ष के सभी सदस्यों के साथ मिलकर काम करेंगे।
2: En consultation, et nous organisons nous-mêmes dans l'opposition. Nous avons un grand leader de l'opposition et camarade pour nous-mêmes, si un des plus grands leaders de l'opposition, donc à son côté, vous pensez, avec son aide, avec son guidance, vous pensez, vous pourrez faire mon travail comme on vient faire.
1: अपना पहला पीएनक्यू पूछने से पहले नए विपक्ष के नेता संसदीय छुट्टियों का उपयोग पूरी तैयारी करने और अपनी रणनीति को मजबूत बनाने में करेंगे।
0: मंत्रिमंडल ने संज्ञान लिया है कि खिलाड़ियों, ट्रेनरों, युवा एवं खेल मंत्रालय के अधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों और सपोर्ट स्टाफ सहित 75 सदस्य मॉरिशस के प्रतिनिधि मंडल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भाग लिया। मॉरिशस ने 6 खेलों एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, जूडो, तैराकी, बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग में प्रतिस्पर्धा की। मॉरिशस ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते, जिनमें जूडो में 1 स्वर्ण, पैरा एथलेटिक्स में 2 रजत और बॉक्सिंग में 1 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। 74 देशों में भाग लेने वाले राष्ट्रमंडल खेल संघों में मॉरिशस 15वां स्थान पर रहा। मंत्रिमंडल ने पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके ट्रेनरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। युवा एवं खेल मंत्रालय ने 7 अगस्त 2026 को सम्मान समारोह आयोजित कर खिलाड़ियों और ट्रेनरों को नगद पुरस्कार प्रदान किए। मंत्रिमंडल ने किम्बर्ली लुतुपिएनह एमएसके के उत्कृष्ट प्रदर्शन की भी सराहना की। उन्होंने 6 अगस्त 2026 को टोनों-सुर-रोन में आयोजित टूर दे फ्रांस महिला श्रेणी के 6ठे चरण में स्प्रिंट फिनिश जीतकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में इसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% बढ़ गई। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की पर्यावरण की स्थिति पर जानकारी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आई है। इस पर शबनीज उजिया वहीद अली की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का।
3: मॉरिशस में 2025 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, अधिक कचरे का निपटान और बारिश में कमी दर्ज की गई है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सकल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 6.57 मिलियन टन से बढ़कर 6.77 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष हो गया है, यानी एक वर्ष में इसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऊर्जा क्षेत्र अभी भी उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, जो कुल उत्सर्जन में 75% का योगदान देता है। इसके बाद कचरा क्षेत्र का स्थान है, जो 13.4% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2025 में मॉरिशस में 582,798 टन कचरा दफन किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। इसके अलावा मॉरिशस में प्राप्त वर्षा की

0: मात्रा में भी 16.6% की कमी दर्ज की गई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि मॉरिशस के सामने पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां अभी भी गंभीर बनी हुई हैं, खासकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, कचरा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के क्षेत्र में।
1: स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन के प्रमुख शिक्षण अस्पतालों में से एक पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये इस सहयोग के तहत मॉरिशस को चीनी विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ मिलेगा, विशेष रूप से कुछ वैस्कुलर बीमारियों का पता लगाने और उपचार के क्षेत्र में। चीन के प्रोफेसर और विशेषज्ञ मॉरिशस आकर स्थानीय चिकित्सा टीमों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी देंगे, खासकर रेडियोलॉजी और न्यूरोलॉजिकल देखभाल जैसे विशेष क्षेत्रों में। इसके अलावा आवश्यक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी तथा चीनी विश्वविद्यालयों के साथ सीधा सहयोग विकसित किया जाएगा। सुनते हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिछू की प्रतिक्रिया को। काविंता पिसा, शबनीज उजिया, वायदाली की रिपोर्ट पर विधिमा सिबरन का विवरण।
2: We've been seeing a memorandum of understanding avec Peking University Third Hospital, qui est une des plus grandes universités qui trouve dans la Chine. Là-bas, on a beaucoup d'advanced clinical expertise.
3: हमने पेकिंग यूनिवर्सिटी सेड हॉस्पिटल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं जो चीन में सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है। वहाँ पर कई एडवांस क्लिनिकल विशेषज्ञ हैं। इस एमओयू के अनुसार वे हमें इंटरवेंशनल डायग्नोसिस जैसे क्षेत्रों में अपनी मदद देंगे। मॉरिशस को इन क्षेत्रों में अनुभव की कमी है, परंतु हमें चीन के साथ सहयोग मिल रहा है ताकि हम अपने मरीजों की मदद कर सकें। अगला चरण ये होगा कि इस यूनिवर्सिटी से विशेषज्ञ और प्रोफेसर्स मॉरिशस आएंगे और हमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और न्यूरो रेडियोलॉजी में हमारी मदद करेंगे। साथ ही एक टेक्निकल इंजीनियर भी भेजेंगे जो टेरे सुविधा स्थापित करेंगे ताकि संचार बेहतर हो।
2: Mantele facilities qui nous capables de communication avec soit l'université.
1: सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से कर्मचारी 30 जून 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने वेतन से कर कटौती शुरू होने से पहले अपने कर संबंधी अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं। इसमें डिपेंडेंस व्यक्तियों के लिए कटौती और पहले 5 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रणब बिहारी के अनुसार ये प्रक्रिया काफी सरल है और पूरी तरह डिजिटल है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए वास्तव में किन चीजों की आवश्यकता है, ज्यादा जानकारी उनकी इस रिपोर्ट में विधिमा सिबरन के विवरण के साथ। एक बार फिर,
3: नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर या गैर नागरिकों के लिए NCID, एक टेलीफोन नंबर और एक ईमेल पता ही पर्याप्त है। डिपेंडेंट व्यक्ति के लिए टैक्स कटौती 1,10,000 रुपए है और 4 या अधिक आश्रितों यानी डिपेंडेंट के लिए ये 3,50,000 रुपए तक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले 5 लाख रुपए की टैक्स योग्य आय पर कोई कर नहीं दिया जाएगा। कई अन्य कटौतियों का भी प्रावधान किया गया है। डिपेंडेंट बच्चे की विश्वविद्यालय की फीस 5 लाख रुपए तक, निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस, देखभाल करने वाले की नियुक्ति, चैरिटी के लिए दान या फिर सौर ऊर्जा या रेन वाटर हार्वेस्टिंग में निवेश। साथ ही आय और संपत्ति की कुछ निश्चित शर्तों के तहत होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली राहत को भी नहीं भूलना चाहिए। MRA की वेबसाइट www.mra.mu पर फॉर्म उपलब्ध है।
1: अब इस आंकड़े को याद रखिए, 320 मिलियन रुपए। ये इस वर्ष की पहली छमाही में एमटेल का मुनाफा है। दूरसंचार कंपनी ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है जहां उसका कर्ज कम हुआ है और प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हुए हैं। ये नतीजे निश्चित रूप से शेयर होल्डरों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ग्रुप ने वर्ष के अंत में उन्हें डिविडेंड पेमेंट करने का एक नया तरीका पेश करने की योजना बनाई है।
3: दरअसल निदेशक मंडल ने डिविडेंड इन शेयर्स देने के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। अब शेयर धारकों के पास विकल्प होगा कि वे नकद भुगतान प्राप्त करें या एमटेल के नए शेयर लें। वे दोनों विकल्पों का मिश्रण भी चुन सकते हैं। ये व्यवस्था इस दूर संचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी को अपनी वित्तीय लचीलापन यानी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और पिछले कुछ वर्षों की अच्छी प्रगति को जारी रखने में मदद करेगी। आंकड़ों के अनुसार इस साल के पहले 6 महीनों में कंपनी के मुनाफे में 34% की वृद्धि हुई है। वहीं राजस्व बढ़कर 2.14 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है, जो 8.6% की बढ़ोतरी दर्शाता है। ये उपलब्धि ऐसे समय में आई है जब 2025 की

0: अवधि में भी कंपनी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा था और उसका टर्नओवर पहले ही 10.8% बढ़ चुका था। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले के मुनाफे की बात करें तो ये 1.7 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है, जो 10.8% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी के सीईओ मार्सेलो अलेमान ने इस प्रदर्शन का श्रेय पहले किए गए निवेशों के बेहतर क्रियान्वयन और उनसे मूल्य सृजन को दिया है। एक और सकारात्मक संकेत ये है कि समूह का कर्ज, जो जून के अंत तक 3 बिलियन रुपए था, घटकर वार्षिकीकृत ब्याज पूर्व मुनाफे के मुकाबले 2.2 गुना से 1.4 गुना रह गया है। एमटेल ने कहा है कि वो देश के डिजिटल परिवर्तन को तेज करने के लिए लक्षित निवेश जारी रखेगा।
1: जहां दुनिया अब तक के सबसे बड़े कोरल ब्लीचिंग संकट का सामना कर रही है, वहीं मॉरिशस में किए गए एक अध्ययन ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है। मॉरिशस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर और शोधकर्ता नदीम नजुराली ने 15 महीने तक लाकोम्बू स्थित एक प्रवाल यानी कोरल नर्सरी में 671 कोरल टुकड़ों का अध्ययन किया। इस वर्ष प्रकाशित परिणामों से पता चला है कि कुछ संरचनाओं में 77% से अधिक जीवित रहने की दर दर्ज की गई है। ये दर्शाता है कि प्रवाल भित्तियों की बहाली समुद्र के बढ़ते तापमान के सामने उनकी सहनशीलता और मजबूती बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी शैली नियबन की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
2: दुनिया भर में ये समस्या है जो कि मुख्य रूप से समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने से उत्पन्न होता है। कोई इसको रोक नहीं पा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। प्रवालों यानी कॉरल्स की पुनर्स्थापना से प्रवाल भीति को किसी भी प्रकार के प्राकृतिक या मानवीय संकट के बाद अधिक तेजी से पुनः स्वस्थ होने में मदद मिलती है। संस्थाओं के बीच ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है। मंत्रालय, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों के बीच ये कड़ी है ही नहीं। केवल किसी परियोजना के लिए हम एक साथ काम करते हैं, इसके बाद संपर्क खत्म हो जाता है। निर्णय अनुभव और वैज्ञानिक खोज पर आधारित होने चाहिए।
1: प्रवाल भीतियां यानी कोरल रीफ्स मॉरिशस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे तटों को कटाव से बचाती हैं, कई समुद्री प्रजातियों को आवास प्रदान करती हैं और मछली पालन तथा पर्यटन उद्योग को भी सहारा देती है। इस पर हम सुनते हैं एक बार फिर नदीम नजुराली को इस विवरण में।
3: Changement climatique lie une grande menace, mais bonne pression locale comme pollution.
2: जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा है, पर स्थानीय दबाव भी इनमें शामिल है, जैसे प्रदूषण, समुद्री इलाकों में विकास, जहाजों का प्रवार रेखाओं पर ठहरना तथा चन पर्यटन गतिविधियों के कारण भी कोरल्स प्रभावित हो सकती हैं। पहले से ही तनावग्रस्त कोरल के लिए समुद्री जल का तापमान बढ़ने पर उसके पुनर्जीवित होने की संभावना काफी कम हो जाती है। मंत्रालय को प्रदूषण पर नियंत्रण के वास्ते तथा प्रवाह रेखाओं को क्षति पहुंचने से रोकने के लिए ज्यादा बूम्स लगाने होंगे, पानी के ट्रीटमेंट बेहतर करने होंगे तथा कमजोर प्रवाह भीतियों का संरक्षण करना होगा और जागरूकता अभियान भी बढ़ाने होंगे।
1: पिछले दिसंबर से बंद मेबर्ग स्थित राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय यानी म्यूजियम में सोमवार से लोवो संग्रहालय की मुख्य संरक्षक डोमिनिक दुफों रेउलुक्स शामिल हुई है। ये सब एक सप्ताह के मिशन पर आई विरासत विशेषज्ञ संग्रहालय उसके संग्रह और आगंतुकों के लिए प्रदर्शनी मार्ग का मूल्यांकन करेगी। इसका उद्देश्य भविष्य की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक योजना तैयार करना है, जो इस स्थल के नवीनीकरण का मार्गदर्शन करेगी। इस नवीनीकरण के लिए 100 मिलियन मॉरिशन रुपए की राशि निर्धारित की गई है। निर्माण कार्यों के अलावा इस पहल का लक्ष्य संग्रहालय को आधुनिक बनाना, राष्ट्रीय इतिहास को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना और मॉरिशन जनता तथा विदेशी पर्यटकों के बीच इसकी आकर्षण क्षमता बढ़ाना है। गौरतलब है कि मंत्री महेंद्र गोंदिया नए कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी के तहत 8 जुलाई को स्थल का पहला तकनीकी दौरा किया था। डोमिनिक दुफों रेउलुक्स को सुनते हैं शैली नेबर की इस रिपोर्ट में।
4: Cette mission, c'est de poser un regard, d'apporter mes conseils, mais aussi d'échanger.
2: लक्ष्य है अपना दृष्टिकोण और सुझाव पेश करना और सहयोगियों के साथ जानकारियों का आदान प्रदान करना, जिससे नए मेबर्ग म्यूजियम पर अपने विचारों को सामने रख पाएंगे, जिसके कुछ सालों में पुनर्निर्माण कार्य किए जाएंगे। जरूरी है इस स्थल के अस्तित्व को समझना, जैसे कैसे और कहाँ इस संग्रह

संग्रहालय को बनाया गया, इसके आसपास क्या हैं तथा जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं वे कौन हैं, और आवश्यक ये भी है कि वर्तमान में इस संग्रहालय की स्थिति और संग्रहों की स्थिति क्या है तथा कैसे यहाँ की जगह तक पहुँचा जाए और इसका उपयोग किया जाए। ये एक वृत्तांत होने के साथ साथ इस स्थान की प्रत्यक्ष स्थिति का भी वर्णन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत तीनों देशों में से किसी एक पर होने वाले हमले की तीनों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते की घोषणा सऊदी अरब के मक्का शहर में आयोजित बैठक के दौरान की गई, जिसमें सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसमें शामिल हुए। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण सऊदी अरब क्षेत्रीय तनाव की चपेट में आया है और रणनीतिक तेल परिवहन मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तथा रेड सी में समुद्री यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में तीनों देश अपने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले वर्ष भी एक संयुक्त रक्षा समझौते की घोषणा की थी। मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का उद्देश्य किसी भी आक्रामक कार्रवाई के खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करना है। समझौते के अनुसार तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा। बढ़ते हैं हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान किया जाता है सुबह के समय और दिन के दौरान बादल घिरेंगे और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। धीरे धीरे रात के दौरान आसमान में बादल घिराएंगे और पूर्व दक्षिण तथा ऊंचाई वाले इलाकों में रह रहकर वर्षा होगी। कोहरा छाएगा और हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। झोंका 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और दक्षिण और पूर्व की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:54 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कंसल पर हमारे सहयोगी फैजल हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। विक्टोरिया रोड मोटाइलोंग में 65 साल के 65 years old के श्री भरद्वाज चमन जिन्हें मिनिस के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके बेटे महेश्वर सिंह नीरज चमन के घर मोटाइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूरियर हाफ पॉस 11 AM। टीबीएस लेन थ्रियोली में 77 साल के 77 years old की जनाब महबूब रोमजोन जिन्हें मिस्यू महबूब के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं, और जो पहले ACP का पद संभालते थे। इनका जनाजा आज सुबह 10:30 बजे इनके मकान थ्रियोली से उठाकर दफनाने के लिए प्रेंदी पपाई का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टूरी एट हॉफ पॉस 10 AM। रॉय रोड फ्लोरियाल में 86 साल की 86 years old की श्रीमती देवंती रामसामी पैदाशाम पियती और जिन्हें साबित के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन टूटियर हॉफ पॉस 1 PM। कौसन

में काची मिलितिया में कौशन विल में काची मिलितिया में 63 साल की 63 years old की श्री गोपी सिंह चौथे जिन्हें रोहित चौथे के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके बेटे आतिश छोटे के घर विल में काची मिलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास्क की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टूडे एट नून क्लेफो नंबर दो वाकुआ में 89 साल की 79 years old के श्री राम जंगली जिन्हें इंदर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12:30 बजे उनके घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूरियर हॉफ पॉस नून एवेन्यू रोवर्स सेकोस्टा सेपिया में 95 साल के 95 years old के श्री मोवेन मुनसामी जिन्हें दासन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके घर सेकोसा सेपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोसा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM गांधी रोड एएनएस फ्लोरों में 56 साल के 56 years old के श्री सतीश उदित जिन्हें सतीश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 10 बजे उनके बेटे अक्षय उदित के घर एएनएस फ्लोरों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM कोलंबो रोड मोताइलोंग में 70 साल की 70 years old की श्रीमती दमयंती मुरुवान पैदाशाम पुलिगादू और जिन्हें कमला के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे कृष्णा मोवेन के घर मोताइलोंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोली की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टूरिया 2 PM A9 एपास प्रेम सिंह बाबूलाल स्ट्रीट बोबासे में A9 impasse Prem Singh Babulal Street Bobasai में 61 साल के श्री सेवराज गेनू जिन्हें बाबू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौतें की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे 2 PM हरे कृष्ण लेन फोतेन लोशे में 74 साल के 74 years old के श्री नारायण दत्त नोबिन जिन्हें प्रकाश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 12 बजे उनके घर लोशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोमोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट नून बाबूलाल लेन मौदालबिया में 94 साल की 94 years old की श्रीमती धनवंती खुबलाल पैदाशाम रघु और जिन्हें शांति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे अर्जुन खुबलाल के घर मौदालविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1:30 PM एवेन्यू एडवर्ड हॉट रेजिडेंस बू सेजोर कैट्रोबोन में 63 साल के 53 years old के श्री सूर्यदेव लकू जिन्हें मनोज के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी उनके भाई नाराज मोहन लकू के घर रेजिडेंस बुसेजो कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए सुबह 11 बजे कैट्रोबोन सैजों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM रेलवे रोड सैमिशेल बेले रिवियर सेश में 77 साल की 77 years old की श्रीमती इंदुमती भुवन पैदाशाम विदेशी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे धर्मदेव भुवन के घर सैमिशेल बेले रिवियर सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 1 PM नंबर 17 एवेन्यू दे इबिस सुदना कैट्रोपोन में 86 साल के 86 years old के श्री पुबाला सुंदरन ओनासाला पातेर जिन्हें बाला बिल पातेर के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके घर सुदना कैट्रोपोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुडे एट 11 AM रॉय रोड ऑसिनाल में 60 साल के 60 years old की श्रीमती उषा जोगिया पैदाशी नाम इसरिया
और जिन्हें नानी गातू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे वीरू जोगिया के घर और सेनाल से उठाकर अंतिम संस्कार

0: के लिए बामोशों की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन ट्रिया 10 AM SSR Road, Moselle-Mont-Saint-André में SSR Road, Moselle-Mont-Saint-André में 66 साल की 66 years old की श्री सुरेश ननलाल चुनी जिन्हें कंट्रोल या TBS के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर Moselle-Mont-Saint-André से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुडे एट 11 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Good good morning, सभी को सुप्रभात. घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 7 बज रहे हैं.
5: Timeless Tadka.
0: RM2.
5: Timeless Tadka.

0: Express तड़का
1: RM2
0: Wishing you all a very good morning, सुप्रभात, सैटरडे की सुबह और घड़ी हमारी बता रही है कि 7:05 अभी तो रिलैक्स खत्म हो चुका है एंड मूड को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि अब समय है टाइमलेस 70 का. मैं हूँ आपके साथ आपके रिया और अगले एक घंटे में आपको मिलेंगे वो गाली जो मूड को एकदम फ्रेश कर दे. कभी थोड़ा रोमांस, कभी थोड़ी मस्ती, कभी पुरानी याद और कभी वो गाना जिससे सुनते ही मन करता है कि बस एक बार और हो जाए. वीकेंड का पहला प्रॉपर मॉर्निंग है. किसी के घर में चाय बन रही होगी, किसी के किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी, कोई मार्केट के लिए निकल रहा होगा, कोई अपनी गाड़ी लेकर रोड पर आ चुका होगा, काम पर जा रही है, कई लोग सब्जी मंडी में काम करते हैं और कुछ लोग अभी भी तकिए को पकड़ के कह रहे होंगे सैटरडे है थोड़ा और सोने दो. लेकिन जो भी आप कर रहे हैं रेडियो मस्ती को अपने साथ रखिए क्योंकि अब सदा बाहर गाने तो नहीं बट वी गॉट अ मस्त मिक्स गाने यहाँ पर. बहुत ही अच्छे अच्छे गाने लेकर आए हैं और टाइमलेस तड़का में तो आपको मिलेगा सब कुछ. वॉल्यूम आप बढ़ाइए, मूड बनाइए और सैटरडे को सैटरडे की तरह जीना शुरू कीजिए. रेडियो मस्ती पर टाइमलेस तड़का शुरू हो चुका है एंड बहुत ही गुड वाइब्स लेकर आई हूँ मैं रिया आपके साथ. सो यस, सो वी गॉट मिक्स सॉन्ग्स यहाँ पर, तो एक दो पैपी गाने, एक दो एनर्जेटिक, एक दो बस यूं ही सैटरडे को फील करने वाले गाने, एक दो रोमांटिक ट्रैक्स और एक दो ऐसे गाने जो आपको डाउन द मेमोरी लेन ले चलेंगे. सो यस, स्टे राइट ट्यून्ड एंड आपके डेडिकेशंस मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुंचाइए. नंबर है 5499-1294.
2: टाइमलेस तड़का
1: RM2
2: टाइमलेस तड़का.

ये बर्थडे सॉन्ग उन सभी के नाम जो आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। पैडी का आज जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे आपको डियरेस्ट पैडी, आप हैं कोच्चि से, एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम योर होल फैमिली। साथ ही साथ आज मम्मा का जन्मदिन है, देविना का जन्मदिन है, सो देविना जी आपको हैप्पी बर्थडे फ्रॉम योर होल फैमिली। आपकी बेटी है कामना उबिलक जो आपको विश कर रही है जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं फ्रॉम हरसेल्फ, एंड आपके दामाद है अक्षय। सो ये प्यारा सा गाना आपके नाम, एंड वेरी हैप्पी बर्थडे आपको फ्रॉम द होल रेडियो मस्ती टीम एज़ वेल।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: घड़ी मिलाते चलिए 7:30 बज रहे हैं और स्टूडियो में आ गए हैं विकास जी लेकर आए हैं चटपटी स्पोर्ट्स खबरें। तो चलिए सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार आपको।
4: नमस्कार रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस। ये स्पोर्ट्स बुलेटिन शुरू करते हैं साइकिलिंग के साथ। आज महिला टूर डी फ्रांस का पूर्वांतिम चरण है, कल शॉ एलिजे में ये प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। सो पूर्वांतिम चरण पेनल्टीमेट स्टेज है, जो इस साल की सबसे लंबी रेस मानी जा रही है, यानी सिस्टेरों से निस तक का लंबा सफर, लंबा यात्रा 171.9 किलोमीटर का लंबा रास्ता। हालांकि हमारी चैंपियन हमवतन किमलेकू डेपिना जनरल क्लासिफिकेशन में 10वें स्थान पे है और वो टाइटल कंटेंडर से 6:17 दूर है, फिर भी आज की ये सबसे लंबी रेस एक टाइटल डिसाइडर साबित हो सकती है। अभी भी पिक्चर बाकी है, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए कम ऑन किम, कम ऑन मॉरिशस। उल्लेखनीय है कि कल के 7वें चरण में किम ने केवल 9वां स्थान प्राप्त किया और वो पहले स्थान पे आई पोलैंड की कैसिया फिने से 3:58 बाद आई। क्षेत्रीय फुटबॉल में रोशनोआ दुदला बीमा सुवेनियर कप के अंतर्गत इस सप्ताहांत 2 मैच खेले जाएंगे। सबसे पहले आज शाम 3:30 वहीं के मैदान पे रेडिस्टा का मुकाबला रेनबो स्पोर्टिंग क्लब से है और कल शाम 3:30 रोशनोआ के फुटबॉल मैदान पे ही स्पोर्टिंग बॉयज एससी का मुकाबला एसोसिएशन रोशनोआ से है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फांटिनो बहुत भारी असमंजस में है। इस बार उसका संबंध एक प्रेमिका लवर के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसे एक सेवरेंस पेमेंट दिया गया है और जो उसके आलोचकों के मुताबिक फीफा के नियमों के विरुद्ध है और जिस पर विरोध किया जा रहा है। जब वो जनरल सेक्रेटरी था तब ये पेमेंट किया गया था और सारे जो पुराने गिले शिकवे हैं सामने आ रहे हैं, इन सब के बारे में सुनते रहिए। फ्रेंडलीज में कल, फ्रेंडलीज से पहले बता दें कि कल के खेले गए मैचों में इंग्लैंड के लीग कप में कल जो 3 मैच खेले गए उनमें वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स ने पोर्टविल को 3-0 से हराया। फर्स्ट राउंड में वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स 3 पोर्टविल 0, विकुम वांडरर्स की हार हुई, विकुम 1 स्टेवेनेज 2 और मिडल्सब्रो ने रैक्साम को 1-0 से परास्त किया। क्लब फ्रेंडलीज में बैन म्यूनिक 2 एस्टन विला 1, इस मैच में किम मिन जाए के बाद लुइस जियाज का एक गोल खेल के 73वें मिनट पर ये विनिंग गोल रहा। फिर बाद में खेल के 83rd मिनट पर नए खिलाड़ी रोआओ गोमेज ने एस्टन विला के लिए एक गोल कम तो किया, लेकिन बैन म्यूनिक ये पड़ाव जीत गया।

2-1 से। और अभी तक बता दें कि हुआओ गोमेज अभी अभी वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स से एस्टन विला में आया है। उल्लेखनीय है कि इसी बुधवार 12 अगस्त की रात 11 बजे यूएफए सुपर कप खेला जाएगा। यूरोपा लीग विनर एस्टन विला और चैंपियंस लीग विजेता पेरिस सैन जर्मेन के बीच। और फ्रेंडली मैचों में ही कल रात फुलहम की जीत

0: United. ट्रांसफर बाजार में लिवरपूल फुटबॉल क्लब अपने फैंस को चौंकाना बंद नहीं करेगा। यदि ब्रैडली बाकुला और इब्राहिम एम्बाये की तलाश जारी है, डिस्कशन को आगे बढ़ा रहा है लिवरपूल, तो एफसी बार्सिलोना का डिफेंडर रोनाल्ड अरोरो लोन पर आ रहा है बीबीसी के मुताबिक। और इधर वर्ल्ड कप का बेहतरीन खिलाड़ी रोड्री एफसी बार्सिलोना का शिकार बन तो गया है, किंतु मैनचेस्टर सिटी ने द ब्लाउग्राना के मात्र 38.5 मिलियन पाउंड को ठुकरा दिया है। ऐसी खबर है कि मैन सिटी 60 मिलियन पाउंड की मांग कर रहा है और रियल मैड्रिड भी अभी इस रेस में लगा हुआ है। द मैगपाइज़ का कप्तान ब्रूनो गिमारेस आर्सेनल में जाना चाहता है, उसके क्लब न्यूकासल यूनाइटेड ने इस बात की जानकारी दी। इसलिए अगले सप्ताह तक ब्राजील का ये 28 वर्षीय मिडफील्डर लगभग 75 मिलियन पाउंड में वो आर्सेनल में हो सकता है। सो बीबीसी के मुताबिक लिवरपूल आर वेरी क्लोज टू साइनिंग यूरोगे डिफेंडर रोनाल्ड अरोरो एक सीजन लोन पर इस सौदे में, उसे खरीदने का भी ऑप्शन है, विकल्प है। एफसी बार्सिलोना में जेरा मार्टिन और पाओ कुबासी के आने से रोनाल्ड अरोरो केवल 11 लीग मैच खेल पाया गत सीजन, हालांकि 2018 से वो एफसी बार्सिलोना के साथ 200 से भी अधिक मैच खेल चुका है। लिवरपूल को भी सेंट्रल डिफेंस में एक सेंटर बैक चाहिए वर्जिल वन डाइक को सहारा देने के लिए, खासतौर पर इब्राहिमा कोनाते के जाने के बाद। और 27 ईयर ओल्ड रोनाल्ड अरोरो फिट करता है विंगर विक्टर मुनेज और डिफेंडर जेरेमी जैकेट आ तो गए हैं, पर सेंट्रल डिफेंस को अभी भी मजबूत करना बाकी है। पॉलिटिशियंस, प्राइवेट जेट्स एंड पावर, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है फीफा के अध्यक्ष ज्ञानी इन्फांटिनो का जीवन। आजकल वो कोलंबिया में है, पिछले सप्ताह कहीं और था और अगले सप्ताह कहीं और होगा। तुम घूमते रहो और हम ढूंढते रहेंगे, इसीलिए कई फुटबॉल फेडरेशंस ने उनके इस्तीफे की मांग की है। इनमें से नोर्वे ने कल रात ही साफ साफ इन्फांटिनो से पद त्यागने को कहा। अब उसके प्रेमिका को लेकर एक और समस्या सामने आ गई है, किंतु दूसरी ओर अपने फेडरेशन से हटकर मेक्सिको और अर्जेंटीना ने इन्फांटिनो का साथ देना अधिक मुनासिब समझा है, जबकि यूएफए अभी भी आगामी विश्व कप को बॉयकॉट करने के पक्ष में है। याद रहे कि मार्च 2027 में ज्ञानी इन्फांटिनो एक नए कार्यकाल के लिए इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। टेनिस में कैनेडियन ओपन में ब्रिटेन के कैमरन नूरी ने जबरदस्त यू टर्न मारते हुए एलेक्स दे मिनो को 5-7, 7-6 और 6-1 से परास्त किया। उल्लेखनीय है कि इस टूर्नामेंट के सभी टॉप सीडेड खिलाड़ी बाहर हैं, यानिक सिनर और नोवाक जोकोविच आए ही नहीं, तो अलेक्जेंडर जेरेव अपना पहला मैच हार गया। लड़कियों में कोको गाउफ ने आज सुबह ही मारिया शकारी को 6-1 और 6-4 से आउट किया। और आज के मैचों में ही कैस्पर रूड इज आउट, उसे हराया होआउ फोंसेका ने 7-6 और 6-3 से। चेम की जीत हुई अगेंस्ट टॉमी पॉल 6-3 और 6-2 से। और जीत गई अरीना सबलेनका, इगा स्वियातेक और जेसिका पेगुला, जो कल फिर से राउंड ऑफ 16 में कदम रख रही है। एंड फाइनली क्रिकेट में श्रीलंका और इंडिया के बीच चल रहे 3 दिवसीय टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर 368 रन बना लिए हैं। आज संभवतः भारत के बल्लेबाज अपने बल्लों का जलवा दिखाएंगे, इसलिए देखते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

0: Timeless तड़का
1: RM2
2: टाइमलेस तड़का पर सैटरडे की सुबह फुल स्विंग में आ चुकी है। 7:50 हुए हैं और अब लग रहा है कि सभी धीरे धीरे पूरी तरह जाग रही है और तो सैटरडे का दिन है, वीकेंड टाइम है, एक अलग ही फीलिंग लेकर आता है ये दिन। फ्राइडे की थकान पीछे रह गई, मंडे अभी दूर है, तो बीच का ये समय बस एंजॉय करने के लिए है। आज का प्लान कुछ भी हो सकता है, घर की सफाई, शॉपिंग, फैमिली के साथ आउटिंग, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, या फिर बिना किसी प्लान के घर पर रहना। और ऑनेस्टली बताओ आपको कि कभी कभी बिना वाला प्लान सैटरडे ही सबसे अच्छा होता है। बस म्यूजिक चलाओ और चाय बनाओ, देखो दिन कहाँ लेकर जाता है। टाइमलेस तड़का में आज मूड भी कुछ ऐसा ही है, गाने भी मिक्स, मूड भी मिक्स, कभी रोमांटिक, कभी एनर्जेटिक, कभी नॉस्टैल्जिक, बस एक चीज सेम रहेगी, आपका मूड अच्छा रहना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट ट्रैक हम आप सभी के नाम डेडिकेट करते हैं, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम द मूवी युवराज।
0: Timeless तड़का
1: RM2
0: Timeless तड़का

0: सुनते रहो।
1: चलिए जी, इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ यू हैड अ गुड टाइम, ये म्यूजिकल सफर आपको पसंद आया। तो बाय बाय, और हमारी मुलाकात जल्द ही होगी। टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। कल सवेरे मिलते हैं रिलैक्स में।

आठ बजे की भुजबी समाचार में सब लोग की स्वागत कर जाता है। सब लोग की नमस्ते आप प्रणाम। सबसे आगे हम नी देश के समाचार संगे ई बुलेटिन की शुरुआत करब। जा विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्ति के दूसर दिन ही चेतन बाबूलाल बोले हवन की उनकर पहला प्राथमिकता राष्ट्रीय सभा में जनता के आवाज के प्रभावी ढंग से उठाए के रही। संसदीय अवकाश के बावजूद भी उ कई गो महत्वपूर्ण मुद्दा की अपन प्राथमिकता बतैलन जोन जनता के हित में रही और जेकर पर वो बहुत हाली काम शुरू करियन। कॉमनवेल्थ खेल 2026 में मॉरिशस ऐतिहासिक प्रदर्शन करत एगो स्वर्ण एगो रजत और एगो ब्रोंज सहित कुल मिला के चार गो पदक जीत के 74 देश में 15वां स्थान पर आल बाटे। आर काल मंत्रिमंडल पदक विजेता खिलाड़ी आर उलो के ट्रेनर के बधाई देलक, जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लेकोपियनो के टूर दे फ्रांस महिला श्रेणी में शानदार जीत खातिर ओकर सराहना करलन। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज करल जाता। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस के हाल के पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार बरिस 2025 में उत्सर्जन 3.4% बढ़ल बाटे, जबकि मॉशिकोज में दफनावल गल कचरा के मात्रा 17% ले बढ़ल बाटे। मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय आज चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग के मजबूत करे खातिर एगो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करल गल। इस साझेदारी के चलत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस में उन्नत चिकित्सा सेवा ट्रेनिंग विशेष उपकरण और आधुनिक उपचार सुविधा के विकास में सहयोग दीहन जा। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी लोग खातिर EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म भरे की प्रक्रिया शुरू हो गल बाटे। ई डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से कम करवा लोग टैक्स लाभ यानी कि जो टैक्स बेनिफिट बा ओकर दावा कर सकें। जा जेकर में जे तोहर एक कोनो डिपेंडेंट हो या फिर शुरू के 5 लाख रुपया लेके थ्रेशहोल्ड पर तोहरा टैक्स एग्जेम्पशन यानी कि छूट की सुविधा भी मिल सकी। और बात कर लिया जो हमने एमटेल के मुनाफा के बारे में। एमटेल जोन बाटे ई बरिस के पहला 6 महीना में 320 मिलियन रुपया के मुनाफा कमैली बाटे। निमन और बेहतर वित्तीय स्थिति कमती कर्जा और मजबूत लाभ मार्जिन के संगे कंपनी शेयर होल्डर खातिर डिविडेंड पेमेंट के एगो नवा व्यवस्था के घोषणा भी कर ली बाटे। और मेबग के राष्ट्रीय इतिहास म्यूजियम के रेनोवेशन के दिशा में कदम तेज हो गल बाटे। फ्रांस के लूव संग्रहालय के विशेषज्ञ डोमिनिक दुफ्रॉ एक सप्ताह ले संग्रहालय और उसका संग्रह के मूल्यांकन करियन, जेकर से 100 मिलियन रुपया के पुनर्निर्माण योजना खातिर भविष्य के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूपरेखा तैयार कर जा सकी। आज दूसरा देश के समाचार में सऊदी अरब तुर्की और पाकिस्तान मिल के सामूहिक सुरक्षा सहयोग के मजबूत करे के उद्देश्य से मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर कर ले हवन जा। इस समझौता के चलत तीनों देश में से कोनो एक पर जे सशस्त्र हमला हो तो सब सदस्य देश यही सोचन जा कि उलोक पर हमला होल बाटे यानी कि जवाबी हमला खातिर तैयार हो के चाहिए। आर एकरे संगे ई भोजपुरी के समाचार समाप्त भइल। अभी 8:04 होवता।

0: Bez Tadka.
1: RM2.
2: गुड मॉर्निंग, 8:00 नॉमिनेट हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं टाइमलेस तड़का। बाहर ठंड है, बारिश भी है, तो जैकेट, स्वेटर, अम्ब्रेला सब साथ रखना, ठीक है। हो सकता है अभी अभी उठे हो या बहुत पहले उठकर हमारे साथ आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि काम तो करनी है। काम कहाँ ख़त्म होते हैं, उससे पीछा नहीं छूट सकता। पर हाँ, मौसम का मज़ा भी लेना है। सबसे पहले आपके साथ जुड़ी रिया, और उसने इस प्रोग्राम को बनाया बहुत ही मस्त, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब मेरी ड्यूटी बनी है, यानी कि मैं हूं आपके साथ इस समय पूनम। पर चलो सबसे पहले मौसम का हाल जान लेते हैं, जिन्होंने मिस कर दिया सुबह कहते हैं कि 6:00 और फिर 6:30 भी। और अब मेरी बारी है कि आपको याद दिला दूं कि पूरा दिन मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: ओनली टू विनर्स।
4: मौसम का हाल, आम हालत। हमारे इलाके पर सामान्य से अस्थिर हवाओं का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय और दिन के दौरान बादल घिराएंगे और विशेषकर ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। धीरे धीरे रात के दौरान आसमान में बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। कोहरा छाएगा और हवा पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। समुद्र प्रवाह रेखा के पार खराब रहेगा और पूर्व की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। खुले समुद्र में न निकलने की सख्त सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:54 पर।
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
0: RM2.
1: Radio Musti.
5: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de jus de fruits Les Vergers de la Bourdonnée à 122,95 € et les 320 ml de Vaseline Body à 219,95 €. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
6: On est tous Winners!
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Express तड़का
1: RM2।
2: मुझे भी याद आ गया कि मैंने आपके साथ गेम खेलनी है और मैंने आपको बोला था भाई गेम खेलते हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि RM2 रेडियो मस्ती और राजस्थान वर्क्स लिमिटेड लेकर आए हैं आपके लिए मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का एक शानदार प्यारा सा छोटा सा गेम है, बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा, बहुत लोगों को पता होगा। दिमाग को दौड़ा लो और देखो कि क्या कौन जीत पाएगा। आपको जीतने को मिलेंगे 4 एंट्री टिकट्स जो कि जेंट्स लिटिल इंडिया की तरफ से हैं, 1 फूड कूपन जिसमें है शाही थाली। शाही थाली में भाई शाही थाली जो होती है ना उसमें बहुत

0: बहुत सारे खाने होते हैं, डिलीशियस खाने होते हैं, खुशबूदार खाने होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, आपको ब्रेकफास्ट करने का दिल कर रहा है और पूरे परिवार के लिए आपको पहुँचना है 12 से 16 अगस्त तक SVISCC पाए, जहाँ आपका इंतजार कर रहा है उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल पावर्ड बाय SBI & LIC। वहाँ मिलेगा आपको इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, इंडियन आइडल से जुड़े गायक प्रणय जैन आएंगे जो कि लाइव परफॉर्मेंस देंगे, और फिर लाइव परफॉर्मेंस होगी आपके साथ बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश्वर की, जो कि स्पेशल अपीयरेंस होगी कानमा शो, ब्लड डोनेशन कैंप और स्वाद से भरपूर फूड फेस्टिवल, जहां पे आपको जाना है और खाना है, और उससे पहले 2-3 दिन 4 दिन कुछ नहीं खाना है, क्योंकि जब कोई बन रहा है जा रहे हैं तो आराम से वहां पे खाइएगा। चलिए गेम शुरू करते हैं, बहुत ही प्यारी सी है, छोटी सी है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के राजस्थान में पारंपरिक तौर पर खाना बनाने में इनमें से किस घी का या तेल का इस्तेमाल किया जाता है? फिर से हम बताते हैं, भारत के राजस्थान जो एक स्टेट है, वहाँ पर पारंपरिक जो खाना बनाया जाता है उसमें कौन से ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है? पहला कोकोनट ऑयल, दूसरा मस्टर्ड ऑयल, तीसरा देसी घी। तो आपको बताना है 5499-1294 पर, और बताना है ये कि कौन सा वाला ऑप्शन आपने चुना। अगर आप जीतेंगे तो आपको मिलेंगे 4 एंट्री टिकट्स और 1 शाही कूपन की थाली। तो बस मुझे बताइए, उसके बाद इस गाने के बाद हम चुनेंगे अपना विनर। एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: टाइमलेस तड़का,
2: RM2
1: टाइमलेस तड़का।

0: Bez तड़का
1: RM2।
2: क्या बात है, क्या बात है। बस हमने भी ऐसे ही सोच रहे थे कि किसको दें, किसको गेम के विनर बनाएं, पर हमने सोचा नहीं, ऐसे आने दो, आने दो। इतने सारे मैसेजेस आए हैं, मैं तो यही सोच रही थी कि कितना एक्साइटेड हैं सभी इस मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का जो प्रोग्राम के लिए जाने वाले हैं। तो चलिए भाई, हमने आपसे एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी एक सवाल पूछा था और उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला था, जो कि RM2 रेडियो मस्ती और राजस्थान वर्क्स लिमिटेड लेकर आए हैं आपके लिए मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का एक प्यारा सा गेम जो आपने खेल लिया है और अब आपका मौका था जीतने का 4 एंट्री टिकट्स जाने के लिए जेंट्स लिटिल इंडिया एंड एक की तरफ से, और एक फूड कूपन जो कि शाही थाली था, जो नॉर्मली आपको पता है कि राजस्थानी स्टाइल में मिलेगी शाही थाली, जहां पे बहुत सारे वैरायटीज होगी और पूरे परिवार के लिए आप 12th से लेके 16 यानी कि 12 से लेके 16 अगस्त तक SVICC पाई में, जहां पर आपको जाना है, जो इंतजार कर रहा है उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल का पावर्ड बाय SBI NRIC, वहां पर आपको मिलेगा इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शोज, इंडियन आइडल से जुड़े जो प्रणय जैन हैं वो भी आ रहे हैं, जिनकी लाइव परफॉर्मेंस होगी, बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर, उनका नाम बहुत ही प्यारा है, धर्मेश सर सभी उनको सर्व लाते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरीके से अपनी जिंदगी को, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होकर अपने आप को सर लगवाया है, तो आप देखिए कितनी मेहनत की होगी। और उसमें इनकी स्पेशल अपीयरेंस होगी, कानमा शो, ब्लड डोनेशन कैंप और स्वाद से भरपूर फेस्टिवल होगा, जहाँ पे आपको सिर्फ खाना है, मस्ती करनी है, बातें करनी है, अपने फैमिली के साथ जाना है। तो चलिए भाई, हमने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा था, क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था कि भारत में जो राजस्थान है वहाँ पे जो पारंपरिक जो तौर

0: पे जो खाना बनाने का तरीका है वो किस ऑयल से बनाया जाता है. तो हमने पहले पूछा था कोकोनट ऑयल, सेकंड पूछा था मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल, और तीसरा देसी घी जो कि काओ से, काओ के घी से बनता है और दूध से बनता है एक्चुअली वो ऑयल. तो जो मेजरली है जो सारे खाने बनते हैं वहाँ पर वो किससे बनते हैं, और हम साथ में ही विनर का नाम भी बता देते हैं. वेट करें जी. क्या बात है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम आपको बता सकते हैं उनका नाम. उनका नाम है माधव गणेश, जिन्होंने राइट आंसर दिया मस्टर्ड ऑयल से. भाई उनके जो खाने होते हैं सारे मस्टर्ड ऑयल से बनते हैं, बट देसी घी से उनकी सारी जो स्वीट्स होती हैं जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं वो बनती है. तो आप जीत गए हैं क्या 4 entry tickets, और जाइए इंजॉय कीजिए और साथ में अपने परिवार को लेके जाइएगा क्योंकि 4 टिकटें हैं, और साथ में खाइए पीजिए मजे कीजिए. और फिर से हम आपको बता देते हैं अभी थोड़ी देर के बाद फिर से हम एक गेम खेलेंगे, फिर आप जीत पाएंगे यही वाला जो गेम है, पर गेम का जो क्वेश्चन होगा वो अलग होगा. तो साथ ही बने रहिए आरएम2 रेडियो मस्ती में, मैं हूं आपके साथ पूनम. एंजॉय कीजिए इस गाने को.
1: टाइमलेस तड़का,
2: आरएम2
1: टाइमलेस तड़का.

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: संक्षिप्त समाचारों के साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी है आशिता रघु। नमस्कार आशिता।
1: नमस्कार किरण। श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्ति के अगले ही दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सभा में जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाना होगी। संसदीय अवकाश के बावजूद उन्होंने कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताया, जिन पर वे जल्द ही काम शुरू करेंगे। कॉमनवेल्थ खेल 2026 में मॉरिशस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, दो रजत और एक ब्रॉन्ज सहित कुल 4 पदक जीतकर 74 देशों में 15वां स्थान हासिल किया है। मंत्रिमंडल ने कल पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके ट्रेनरों को बधाई दी है, जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लुकोपियन की टूर दे फ्रांस महिला श्रेणी में शानदार जीत की भी सराहना की है। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में उत्सर्जन 3.4% से बढ़ा है, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा में 17% की वृद्धि हुई है। मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी के तहत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस में उन्नत चिकित्सा सेवाओं, ट्रेनिंग, विशेष उपकरणों और आधुनिक उपचार सुविधाओं के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लारेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस डिजिटल प्रक्रिया के जरिए कर्मचारी टैक्स बेनिफिट्स यानी लाभों का दावा कर सकती हैं, जिसमें डिपेंडेंस और शुरुआती 5,00,000 रुपए तक की थ्रेशहोल्ड पर टैक्स एग्जेम्पशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। बात करें थोड़ा मुनाफा के बारे में, एमटेल ने इस वर्ष की पहली छमाही में 320 मिलियन रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। बेहतर वित्तीय स्थिति, कम कर्ज और मजबूत लाभ मार्जिन के साथ कंपनी ने शेयरहोल्डरों के लिए डिविडेंड पेमेंट की नई व्यवस्था की घोषणा भी की है। और दुनिया में जारी सबसे बड़े कोरल ब्लीचिंग संकट के बीच मॉरिशस में एक अध्ययन ने नई उम्मीद जगाई है। लाकोंब्यूज में किए गए शोध से पता चला है कि कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भीतियों की बहाली से समुद्र के बढ़ते तापमान के प्रभावों के खिलाफ उनकी क्षमता को मजबूत किया जा सकता है, और जहां कुछ संरचनाओं में 70% से अधिक जीवित रहने की दर दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने सामूहिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत तीनों देशों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला सभी देश सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। और आपको हम याद दिला देते हैं कि समाचारों के तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम आज की चर्चा, और आज के लिए विषय है इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जो कि है 1 से 8 अगस्त। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान है कम्युनिटी फिजिशियन डॉक्टर राजीव बचोनी और सीनियर मिडवाइफ श्रीमती सुमेरी सोनू, और आज के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी किरण जानकी। तो इसके साथ ये फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
2: Timeless Tadka. RM2. Timeless Tadka.

0: एक्सप्रेस तड़का
1: RM2
2: 9:11 हो चुके हैं, बाहर बारिश हो या धूप, गाना हमेशा साथ होता है और टाइमलेस तड़का का ये गाना ठंडी हवा और गर्म चाय की तरह, बैठो आराम करो और सुनो ये गाने। भाई क्या बात है, मुझे पता है कि इस समय बहुत सारे बच्चे पटा रहे होंगे मम्मी पापा को और बोल रहे होंगे देखिए वीकेंड स्टार्ट हो गया है, हमें शाम को पार्टी करनी है। पर सबसे पहले उनसे ये पूछो कि एक हफ्ता रह गया है स्कूल ओपन होने में, तो उन्होंने रिविजन कर ली है? रिविजन कर ली है तो पार्टी कर सकते हैं। देखो यही तो होता है, और आज कल तो मम्मी पापा इतना समझदार हो गए हैं, पहले हमें डांट पड़ती थी नहीं जाना घर में बैठो, पर आजकल मम्मी पापा समझते हैं बस पटाने का तरीका आना चाहिए। हम तो छोटों को यही बोलते हैं भाई थोड़ी सी रिवीजन करो, पढ़ाई कर लो, बिल्कुल तैयारी वैयारी कर लो, घर अपना रूम साफ कर लो, क्लीन कर लो, बेडशीट चेंज कर दो। जब मम्मी पापा को दिखेगा कि आपने सारे काम कर लिए हैं तो खुद से ही बोलेंगे अरे घर में क्यों बैठे हो, कहीं बाहर भी जाओ, थोड़ा सा घूमो फिरो, हर वक्त घर में बैठे रहते हो, जब कुछ करोगे नहीं हमेशा फोन पे बैठे रहोगे स्क्रॉल करते रहोगे, तो फिर उन्होंने बोलना थोड़ा पढ़ लो। तो हम तो आपको आइडिया दे रहे हैं शाम को पटाने का, चलो एंजॉय करते हैं गाने। और मम्मी पापा जो बच्चे आपको पटा रहे हैं सुबह से मुझे मैसेज करके बताओ 5499-1294 पर, और बताओ किसी के लिए डेडिकेशन है या कोई बेस्ट विशेस है या कोई किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, थोड़ी याद कर लो, वरना सारे बोलेंगे अच्छा मेरा दिन था और तुम्हें याद नहीं था। एंजॉय कीजिए गाने को।
0: टाइमलेस तड़का RM2 टाइमलेस तड़का।

0: है तड़का
1: RM2।
2: क्या बात है भाई, जलवा तो जिनका है उनका है, पर ये जो जलवा है ना, जिसमें कहते हैं आपके मैसेजेस होते हैं और आपकी बातें होती हैं और इतना सारा प्यार जो भेजते हैं एक दूसरे के लिए, इसमें मज़ा आ जाता है। तो चलिए भाई, दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं, मोहब्बत से भरे हुए, प्यार से भरे हुए ये खत। चलिए भाई, चिट्ठी हमारी तरफ से नहीं है, आपके अपनों की तरफ से है। इन्जॉय कीजिए अपने गानों के साथ अपने प्यारे से मैसेजेस। इस समय हमारे साथ एक पंजाबी दोस्त हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, बट कहा जो गाने चल रहे हैं सारे ही मेरे फेवरेट हैं। तो भाई सर, अपना नाम तो बता दो, बट इंजॉय कीजिए आपके गाने। आरती जी हमारा साथ दे रही हैं, सेतुल जी साथ में जुड़ी हुई हैं, आपका वेलकम है। और नताशा सिबरन जो कि रोजिल से हैं, आज उनका बर्थडे है और पूरी फैमिली, उनके फ्रेंड सर्कल उन्हें विश कर रहे हैं और इंजॉय करने के लिए कह रहे हैं कि भाई आज का डे तुम्हें कितनी लकी हो, क्योंकि तुम्हें सैटरडे मिला है, वीकेंड में इंजॉय करो, फिर कल जो थकोगे उसका रिलैक्स हो जाओगे और उसके बाद से फिर से मंडे आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो ये तो सच बात है भाई, ये तो अपनी अपनी बात है, बर्थडे की बात है, किसी ने डिसाइड तो नहीं किया होता। बट इस समय हमारे साथ एक हो रहे हैं जहाँ पर बर्थडे विशेज आई हैं पापा मामा होल फैमिली की तरफ से, जनशी शिनजू चुरमुन जी के लिए, जो कि आज 18 ईयर्स की हो गई हैं और इंजॉय करने को कह रहे हैं और कह रहे हैं बस तुम ये बताओ तुमको बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए, हम यहाँ पर हैं तुमको गिफ्ट देने के लिए, पर उठो तो सही। अरे उठ जाओ, बताओ कि आपको क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए और हमें भेज देना कुछ एक केक, छोटा सा पीस, हम यहाँ बैठे हैं पूरी टीम के साथ, मतलब पीस ही चलेगा, हम शेयर कर लेंगे। और इस समय आज है पूजा जी का भी हैप्पी

जो कि हैप्पी वाला बर्थडे है और वो बहुत सारे परिवार इंजॉय कर रहे हैं। पर मैं आपको सच में बताऊं, इनके लिए चार लोगों ने, अलग अलग लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं और कहा कि हे सिस्टर इन लॉ, आप बहुत अच्छी हैं। रीना जी की तरफ से, पल्लवी, आरव, रितेश एंड बिसेसर फैमिली, सनवी फ्रॉम कैरोलिन से भी, बाबू फैमिली, ललिता, जीतन जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और सारे जने एक दूसरे को विश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे जिसका भी है, बस वो हमेशा खुश रहें, इंजॉय करें। तो हम भी कहाँ पीछे रहेंगे, हम रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, हम आपके लिए वो चलाने वाले हैं जो हमारी सबसे फेवरेट जिंगल रहती है आप सबके लिए, जिनका भी बर्थडे है। इंजॉय कीजिए अपने बर्थडे को और उन सबके साथ जुड़े रहिए जो आपको इतना प्यार देते हैं, इतनी विशेस देते हैं। और बर्थडे का जो केक वेक है, कट करो, गिफ्ट लो, एंजॉय करो, आपका ये हमारी तरफ से।

0: Express तड़का
1: RM2
2: 9:36 हो चुके हैं। कैसा लगता है जब कोई पुराना गाना बजता है और आप वहां पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ आसान था, फोन नहीं था, कोई मैसेजेस नहीं थे, बस एक फोन कॉल होता था घर पर, जहां पर ट्रंक कॉल बजता था, मम्मी पापा भाग के जाते थे, फोन पकड़ते थे और बोलते थे हेलो कौन है, और बस वो फटाफट से बात खत्म होती थी और उसके बाद सब पूछते क्या हुआ, किसका फोन था, और हमें एक्साइटमेंट होती थी, अरे कोई बताए कि वहां पर पीछे से क्या मैसेजेस आए हैं, तो हम सुनते थे। ये टाइम था ना, बहुत बढ़िया था, और उस टाइम के जो गाने थे, आए क्या बात करें। तो चलिए भाई, अगर आप भी उसी टाइम में पहुंच गए हैं हमारी बातों के बाद, तो इंजॉय कीजिए गानों को और मस्त रहिए, खुश रहिए, धूप को थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, थोड़ी सी फ्रेश हवा लीजिए, ब्रीथ कीजिए, और आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप प्यार से इधर फ्लोट कर रहे हैं। जब आपको लगेगा ना कि आप मस्ती में हैं, झूमेंगे, तो आप देखिएगा कि सुबह तो आपकी अच्छी होगी, आपकी शाम, दोपहर, रात बहुत अच्छी हो जाएगी। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट इंजॉय कीजिए, चाय पीजिए, कुछ कुछ और खा रहे हैं तो खाइए, पर हम इतना बोलते रहते हैं बड़ा बड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराहट जितनी बड़ी होगी ना आपका उतना दिन अच्छा जाएगा। इंजॉय कीजिए गानों को और साथ में हमारे बने रहिए RM2 रेडियो मस्ती, जो कि 24 आवर्स है आपके साथ। हमारे सब आरजेस सिर्फ आपकी मुस्कुराहट के पीछे पड़े रहते हैं कि आप मुस्कुराए मुस्कुराए मुस्कुराए, तो अगर आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया तो ये गाना आप सबके लिए। इंजॉय कीजिए उस मोमेंट को, जब जब जिसने ये मूवी देखी होगी ना उसको एहसास हो जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। चलिए ये गाना सुनते हैं।
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का।

नेक्स्ट सॉन्ग केविन एंड वरुणा की तरफ से, उसके साथ में आरजे पूनम, थैंक यू स्विनल हेयर, और अपने पूरे परिवार के साथ गंगा तालाब की ओर जा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस प्यार ब्यूटीफुल प्रोग्राम को. इंजॉय कीजिए दिस सॉन्ग, रुकी रुकी सी जिंदगी.

0: एस तड़का
1: RM2
2: 9:52 हो चुके हैं। जो लोग इस समय गंगा तालाब की तरफ जा रहे हैं, भक्तों के पूरे परिवार की तरफ से शुभकामनाएं और श्रवण मास की बधाई हो। बढ़ते चलो पर स्वेटर या शॉल अपने प्रिकॉशन साथ लेके चलना, अम्ब्रेला साथ में लेके चलना, पानी साथ में लेके जाना, कुछ ऐसा इजी कपड़े पहनना जिससे आपको तकलीफ ना हो। अगर स्लीपर्स हैं तो जो कि ईजी कैरी भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा टिश्यू पेपर साथ ले जाइएगा क्योंकि हो सकता है थोड़े से गीले हो जाएं, तो फिर पैर साफ साफ करते हुए बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ ले जाइए जो खाने पीने की हो। तो ये तो चीज़ें हैं जो कि हम लोग आपको रोज़मर्रा बोलते हैं और आप सबको पता भी है, बट कई बार होता है बस दिमाग से निकल जाती है बात, पर हम है ना आपके लिए, तो यहाँ पर याद दिलाने के लिए इस समय, जैसे कि स्वेनल ने हमें सभी को याद दिलाया है कि भाई सभी भक्तों के लिए प्यारा सा गाना ज़रूर चलाइएगा क्योंकि श्रवण मास है और इसमें हर हर महादेव तक बनता है। साथ में ललित जी USA साथ दे रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं श्रवण मास की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। एलिना और प्रिया प्रियांशी भी विश कर रहे हैं सभी को और कह रहे हैं बढ़ते चलो, इंजॉय करो गानों को, और साथ में यही है कि सबकी मनोकामनाएं सबकी पूरी हो, खुश रहो, इंजॉय करो ये गाना।
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check, सुबह के 10 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से. आशिता आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में स्वागत है आप सभी का. मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है. वर्ष 2025 में इसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% बढ़ गई. ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की पर्यावरण की स्थिति पर जानकारी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आई. स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन की प्रमुख शिक्षण अस्पतालों में से एक पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की गई है. इस सहयोग के तहत मॉरिशस को चीनी विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ मिलेगा, विशेष रूप से कुछ वैस्कुलर बीमारियों का पता लगाने और उपचार के क्षेत्र में. चीन के प्रोफेसर और विशेषज्ञ मॉरिशस आकर स्थानीय चिकित्सा टीमों को प्रशिक्षण

0: और मार्गदर्शन भी देंगी, खासकर रेडियोलॉजी और न्यूरोलॉजिकल देखभाल जैसे विशेष क्षेत्रों में। इसके अलावा आवश्यक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं भी स्थापित की जाएगी तथा चीनी विश्वविद्यालयों के साथ सीधा सहयोग विकसित किया जाएगा। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ईडीएफ यानी एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से कर्मचारी 30 जून 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने वेतन से कर कटौती शुरू होने से पहले अपने कर संबंधी अधिकारों यानी कि टैक्स संबंधी अधिकारों का लाभ उठा सकती हैं। इस समय डिपेंडेंस व्यक्तियों के लिए कटौती और पहले 5 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन ने इटली से आने वाली हवाई और समुद्री यात्राओं पर सीमा नियंत्रण लागू कर दिया है। ये कदम इटली द्वारा स्पेन से आने वाले लोगों पर इसी तरह की जांच शुरू करने के एक सप्ताह बाद उठाया गया है। दोनों देशों के बीच विवाद मोरक्को से करीब 78,000 प्रवासियों के स्पेन के सेउता पहुंचने के बाद बढ़ा। स्पेन ने इटली से जांच हटाने की मांग की है लेकिन रोम ने इसे कम से कम 15 अगस्त तक जारी रखने की बात कही है। इटली ने कहा है कि सुरक्षा जोखिम खत्म होने तक वह अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड वालिता में, क्षमा कीजिए, रॉय रोड वालिता में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री अनुराग रामदोया जिन्हें संता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 3 बजे सेंट फिनेरिया दे मुरा पिछित रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन चिड़िया 3 PM अवनी पिजो प्लेजेंस रोजिल में, अवनी पिजो प्लेजेंस रोजिल में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की बीबी हसन बी डोमा पैदाश नाम एस के हुसैन इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज 1:30 बजे इनके मकान प्लेजेंस रोजिल से उठाकर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल चिड़िया 1:30 PM हॉलीवुड नंबर एक वाकुआ में 83 साल के 83 ईयर्स ओल्ड के श्री बलकरण सीताहल जिन्हें धनराज के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉमा मेल की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन चिड़िया 1 PM रुई मागाजें विलनुआ मेबर्ग में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री नवबत सिंह सियापत जिन्हें राजेश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी सोमवार को सुबह 10 बजे उनके घर मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे एट 10 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. Timeless Tarka. RM2. Timeless Tarka.

0: एक्सप्रेस तड़का
1: RM2
2: 10:11 हो चुके हैं और सुबह हो या दोपहर हमारे गाने तो हमेशा जागते रहते हैं. उठो हिलो डांस करो क्योंकि टाइमलेस तड़का का 2 hours निकल गया, सिर्फ 1 hour रह गया है. और इस टाइम में ही तो आपको पूरे दिन की काम की तैयारी करनी होती है. घर से बाहर जाना है, किसी क्रूज़ पे जाना है, किसी बोट पे जाना है. बहुत सारे लोग निकल चुके हैं, आप कहाँ रह गए हो, क्यों रुके हुए हो, कहीं घूमने का प्लान करो, किसी दोस्त को फ़ोन करो, बिल्कुल घर में मत बैठो. सैटरडे का दिन हो और संडे, ये दोनों दिन ऐसे होते हैं ना कि इसमें आपको कुछ ना कुछ करते रहना है. और जो लोग हैं जिनको भाई ज़रूरत है घर पर ही रहना है, उन्होंने लास्ट वीकेंड इंजॉय किया था, आज बस ये वीकेंड में थोड़ा सा रेस्ट चाहते हैं, तो बस क्या करना है, पैर हिलाइए, साथ में गाने सुनिए, थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, घर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करो, थोड़ी सी कारपेट को क्लीन कर लो, थोड़ा सा इधर से हिला दो उधर से हिला दो. कहते हैं कि जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हिल जाती हैं ना तो घर बड़ा सुंदर सा लगने लगता है और एहसास होता है अरे ये तो बस जैसे पहला था वैसे नहीं लग रहा है, आज थोड़ा सा चेंज लग रहा है. तो ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. नींद नहीं होनी चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए, ये टाइम आपका है. और अगर जो लोग इस समय जिम कर रहे हैं या जो लोग अपने घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या कोई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो ओल्ड हो रहे हैं और उनको थोड़ा सा कुछ मूड चेंज करना है, तो हम आपको इतना बोलेंगे गाने चलाओ, डांस करो, मस्ती करो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा और जीने का एक मौका देता है क्योंकि गाने हमेशा आपके साथ है, आपके प्यार के साथ है. इंजॉय कीजिए इस गाने को, धाकड़
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: to Radio Musti.
1: शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC Pi सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC Pi मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स Limited.
0: RM2
2: Radio Musti.

0: Без торга.
1: RM2.
2: 10:26 हो चुके हैं दोस्तों, ठंड आ गई है, द स्वेटर्स और जैकेट्स भी अलमारी से बाहर आ ही गए होंगे, लेकिन ज़रा देखिए कहीं उन पर छोटे छोटे से रुएं, जिसे हम छोटे छोटे से बॉल्स बोलते हैं, लिंट बोलते हैं, तो वो तो नहीं निकल गए हैं, क्योंकि कई बार होता है कि जो क्वालिटी होती है बहुत बढ़िया होती है, पर फिर भी वो नेचुरल होते हैं, और जब वो आ जाते हैं वो लिंट्स, तो थोड़े से बुरे लगते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है कि ज़्यादा दम नहीं लगाना है आपको, एक लिंट रोलर लेना है और उस पर हल्का सा चलाना है, आप देखेंगे कि वो रुएँ अपने आप उतर जाते हैं। बट अगर उस पर छोटी छोटी सी बॉल्स आ गई हैं, छोटे छोटे से वो जो लिंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक छोटी छोटी सी बॉल बन जाती है, और कई बार वो जो स्वेटर्स होते हैं या उनको हम पहनकर सो जाते हैं, तो मोस्टली तब आते हैं। अगर आप उसको आप वैसे ही रखेंगे तो नहीं आएगा, पर जब आप सो जाते हैं उस स्वेटर को पहन के, तो उसमें थोड़े से रुएं इकट्ठे हो जाते हैं आपस में, वो बहुत बुरे लगते हैं और थोड़े से खरखरे से हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जिससे आप बियर्ड बनाते हैं, यानी कि शेवर, वो लीजिए, जिसे दाढ़ी बनाते हैं वो शेवर लीजिए, और अपने क्लॉथ को थोड़ा सा टाइट कीजिए और उस पर हल्का सा एक दो बार चलाएंगे, तो जो हल्के से जो बॉल्स बने हुए हैं वो हल्के से हिल जाएंगे, कट जाएंगे। और बस उसको पहले आप थोड़ी सी ऐसी जगह पर ट्राई करिएगा जहाँ पर आपको, मतलब छोटा सा पीस हो क्लॉथ का, वहाँ पर ट्राई कीजिए। जब आप वो निकल जाए तो आप उसको पूरे अपने, जैसे कई बार लोगों के पजामाज होते हैं उस पर भी आ जाते हैं, तो वो थोड़े से बुरे लगते हैं, आप उसको आराम से क्लीन कर सकते हैं, बस शेवर यूज़ कीजिए। और आपका ये जो कहते हैं ना, ये जो टिप है बहुत काम आती है, लेडीज़ को बहुत चीज़ें, ये चीज़ों की पता होती है, बट हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो मेल्स हैं उनको नहीं पता होती। तो पर अगर आपके घर में कोई फीमेल नहीं है तो हम हैं आपको बताने के लिए, तो शेवर ट्राई कीजिए, लिंट रोलर ट्राई कीजिए, या थोड़ी सी बड़ी सी चौड़ी सी टेप भी ले सकते हैं, उससे भी अगर आप हाथ में अपने लपेटेंगे और धीरे धीरे करेंगे, उसके ऊपर प्रेस करेंगे, तो वो लिंट्स निकल जाते हैं। तो इन्जॉय कीजिए रेस्ट ऑफ द शो।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: RM2
1: Radio Musti
0: Timeless Tadka
1: RM2
2: क्या बात है, जब ये साउंड बजती है ना तो सबको एहसास हो जाता है या तो कोई आरजे बोलने वाला है या कोई गेम स्टार्ट होने वाली है। तो भाई हम क्यों आपको ना बताएं कि अब कौन सी गेम है, तो चलिए तैयार हो जाइए क्योंकि RM2 रेडियो मस्ती और राजस्थान

Products Limited लेकर आए हैं आपके लिए मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का एक शानदार गेम. आज आपके पास है मौका जीतने का 4 एंट्री टिकट्स और जेंट्स लिटिल इंडिया की तरफ से 1 फूड कूपन जो कि शाही थाली है. और शाही थाली में तो आपको पता ही है कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी सारी वैरायटी होती है और पूरे

0: जो हैं प्रणय जैन जो कि लाइव परफॉर्मेंस देंगे, बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर की स्पेशल अपीयरेंस होगी, कानमा शो होगा और बहुत सारे फूड फेस्टिवल लगने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग मॉरिशस के, अलग अलग जगहों के बहुत सारे खाने को डिशेज आपको मिलेंगी, पर आपको हमारे साथ गेम खेलना है इस चीज़ के लिए। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है कि विदाउट गेम तो हम आपको ये दे नहीं सकते, पर सबसे पहले आपको ये देना है, आंसर देने से पहले आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि आपको अपना टेलीफोन नंबर बताना है, अपना एड्रेस बताना है और अपना पूरा नाम बताना है। अगर ये इसमें गड़बड़ होगी तो फिर हम वो आपका ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। चलिए, उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवाल में मनोरंजन और शॉपिंग के साथ साथ एक नेक काम के लिए भी खास कैंप लगने जा रहा है। आपको बताना है वो कैंप कौन सा है। पहला हेल्थ चेकअप कैंप होगा, सेकेंड ब्लड डोनेशन कैंप, थर्ड आई चेकअप कैंप होगा। जो सही जवाब देगा उसको हम लकी विनर बनाएंगे। रेडियो मस्ती आपके साथ है 24 आवर्स, इंजॉय कीजिए। दो गानों के बाद हम आंसर देंगे कौन हमारा विनर बना। फटाफट से भेजिए अपना आंसर।
1: Avec le froid, c'est le moment de prendre soin de soi. Du 7 au 23 août, Winners vous invite à faire le plein de vitamines. Profitez de nos offres sur les fruits et légumes frais, les jus, les produits sains et venez savourer nos dégustations en magasin. Le litre de Nature's Juice à 76,95 et le pack de 24 rouleaux de papier toilette Winners à 369,95. Faites le plein de fraîcheur, de saveur et de vitalité pour affronter l'hiver. Venez vivre l'expérience chez Winners.
2: On est tous Winners!
3: RM2 Radio Musty.

0: Μέρες Τώρα.
1: RM2.
2: 10:45 मिनट हो चुके हैं और हमने गेम खेल ली और आपने आंसर दे दिए और जो भी आंसर्स दिए उसमें हमने जो गेम खेली थी पहले तो उसकी बात करते हैं, फिर हम विनर की बात करेंगे और आपने क्या जीता है वो भी हम बताएंगे आपको। तो आर एम टू रेडियो मस्ती और राजस्थान वर्क्स लिमिटेड लेकर आए थे आपके लिए मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल का एक शानदार गेम और आपके पास मौका था जीतने का 4 एंट्री टिकट्स जो कि जेंट्स लिटिल इंडिया की तरफ से था और 1 फूड कूपन शाही थाली। शाही थाली के अंदर बहुत सी वैरायटी होती है जिसमें बहुत सारे खाने होते हैं, फ्लेवर होते हैं, डिशेस होते हैं और आप पूरे परिवार के साथ पहुंचेंगे 12 से 16 अगस्त यानी 12-16 अगस्त SVICCPI जहां आपका इंतज़ार हो रहा है उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। वहां मिलेगा इंटरनेशनल

0: such as shopping, entertainment shows, magic shows, फैशन शो, इंडियन आइडल से जुड़े हुए गायक जो कि प्रणय जैन है वो भी अपनी लाइव परफॉर्मेंस देंगे. बॉलीवुड कोरियोग्राफर धर्मेश सर की भी स्पेशल अपेयरेंस होगी और कानमा शो होगा. और उसमें हमने एक आपसे स्पेशल चीज़ पूछी थी और बहुत सारा फेस्टिवल होने वाला, बहुत सारे खाने होने वाले हैं और उसमें से हमारा एक छोटा सा सवाल था, बहुत ही प्यारा सा, कि उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल में जो मनोरंजन होगा उसमें एक नेक काम होने जा रहा है वो कैंप का नाम क्या है. पहला हमने पूछा था हेल्थ चेकअप कैंप, सेकेंड पूछा था ब्लड डोनेशन कैंप, थर्ड पूछा था आई चेकअप कैंप. आप इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, मैं क्या बताऊँ. आप सब लोग लगता है मुझे कि बहुत ध्यान से हर चीज़ सुनते हैं और बहुत तरीके से मतलब आंसर्स देते हैं. बट हमने जीतना तो एक ही था ना, तो जीत लिया हमने. उसका नाम है सारे जने अपने लिए बजाइए तालियां क्योंकि आप सब ने खेला है और बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया है. पर हमारे जो ड्रॉ है उसके अंदर तो एक ने जीता है. उनका नाम है, यस यस, उनका नाम है, यस, फरीन. फरीन ने जीता है 4 entry टिकट्स और एक शाही थाली. इंजॉय कीजिए अपने गानों को और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू डियर. और आप सभी का जो भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं रेडियो मस्ती के साथ में, हमारी रेडियो मस्ती के साथ में गानों के साथ में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स एंड वाउचर्स मिलते हैं. उसके लिए इंजॉय करते रहिए साथ में. आप बिल्कुल दिल को छोटा नहीं करेंगे क्योंकि पूरे दिन सभी आरजेस आपके लिए बार बार कोई ना कोई गेम्स लेकर आएंगे. तो इंजॉय कीजिए इस गाने को और साथ में जुड़े रहें फरीन के साथ.
1: Timeless Tadka. RM2. Timeless Tadka.

तो दोस्तों 3 hours पे भी प्रोग्राम यानी कि टाइमलेस तड़का आपका ख़त्म होता है. थोड़ा सा डांस किया, थोड़े से गाने गाए और बहुत सारी एनर्जी ली. बाहर ठंड है, अपना ख्याल रखिएगा, स्वेटर जैकेट या कैप अपने साथ रखिएगा.

आज की सुबह मस्त रही थी आपकी भी, मुझे लगता है उम्मीद है मस्त हुई होगी। टाइमलेस तड़का कल फिर मिलेगा आपको, पर मैं थी आपके साथ पूनम, मेरे बाद आपको साथ मिलने जा रहा है नीलमणि का। एंजॉय कीजिएगा, बट उससे पहले आपको मिलेगा न्यूज़।

0: सुबह के 11:01 हो चुका है. आप सुन रहे हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से. आशिता आपको नमस्कार.
1: नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. EDF यानी एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्म के माध्यम से कर्मचारी 30 जून 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अपने वेतन से कर कटौती शुरू होने से पहले अपने कर संबंधी अधिकारों का लाभ उठा सकती हैं. इस समय डिपेंडेंस व्यक्तियों के लिए कटौती और पहले 5 लाख रुपए तक की

0: आय पर कर छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। हर साल मॉरिशस में स्ट्रोक के 4,000 से अधिक मामले सामने आती हैं। इन मरीजों में से एक तिहाई की इस बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जबकि अन्य मरीजों में आंशिक या पूर्ण लकवे जैसी गंभीर समस्याएं रह सकती हैं। स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों का सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए चीन के जनवादी गणराज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन दान करने के साथ साथ मॉरिशस के डॉक्टरों को प्रशिक्षण देने का भी प्रावधान है। मॉरिशस के 2 न्यूरोसर्जन और 2 इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल में इस उपकरण के इस्तेमाल और ऐसी चिकित्सकीय प्रक्रियाओं को करने का प्रशिक्षण पहले ही ले चुके हैं। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2025 में इसमें 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% बढ़ गई है। ये जानकारी स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की पर्यावरण की स्थिति पर जारी हाल की रिपोर्ट में सामने आई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात भर हुए रूसी मिसाइल हमलों में एक बच्चे समेत कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। हमलों में कई इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा, जबकि 3 लोग घायल हुए। ये हमला यूक्रेन में हालिया रूसी हमलों में 21 लोगों की मौत के कुछ दिन बाद हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की राजधानी बेलग्रेड पहुंचे हैं सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंचे हैं। ये उनकी पहली सर्बिया यात्रा है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर। शुभ समाचार सुनिए। कौ आकाशिया पुस्त दिफ्लाक में 74 साल के 74 के श्री बुद्राम गुना जिन्हें विजय के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती रजनी गुना के घर पुस्त दिफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। कमीशन 3 PM रॉय रोड पोविदांस कौचिमृतिया में की 61 की श्रीमती लक्ष्मी चिमन पैदाशा मुदिली और जिन्हें अम्मा चिमन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज उनके घर पोविदांस कौचिमृतिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 3:30 बजे मेजिन कौदमास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM बागोद्वालीन मुफेअसिल न्यू ग्रोव में 55 की 55 की श्रीमती मनीबाई नावजी पैदाशी नाम सुखिया जिन्हें मित्रा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 3:30 बजे उनके पति धनंजय नावजी के घर न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए 3:30 बजे रॉसबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Body Branch RM2 Radio Musty
2: RM2
1: Radio Musty.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: 11:10 हुए हैं और आप कनेक्टेड हो गए हैं बॉली ब्रंच के साथ विद मी नीलमणी. आशा है कि आपका सैटरडे अच्छे से चल रहा है. आज हम पहुंच गए हैं 8 अगस्त तक. अभी अभी तो अगस्त का महीना शुरू हुआ था और हम पहुंच गए 8 तक. तो अगर आपके कोई भी प्लान्स है और आपने प्लान किया था कि ये करना है वो करना है, टाइम से सब करेंगे. आप बस प्लानिंग की तैयारी करो, अदरवाइज हम पर छोड़ दीजिए क्योंकि हम यहीं पर होंगे आपको मोटिवेट करने के लिए गानों के जरिए. तो आप बस RM2 रेडियो मस्ती के साथ ही कनेक्टेड रहना.
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.

0: FM2
1: Radio Musti
2: Atmagyan Meditation Society invite tout Mauricien qui est na saison ou plus pour une session méditation pour Swami Paramananda chaque dimanche à partir 9 août depuis 9h30 jusqu'à 10h30 dans Know Thyself Meditation Center Buklima, La Flora.
3: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मूसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: यस, बॉली ब्रंच का सफर है आपका, क्या होगा जन्नावे अली। अरे वाइफ, वन रेडियो मस्तीज ये गाने जबरदस्त ला रहे हैं आपके सैटरडे को मूविंग रखने के लिए। जल्द ही लंच टाइम होने वाला है, लेकिन सैटरडेज पर रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। अगर भूख लगी है तो लग जाओ खाने पर। बन अपेटी विश करती हूँ एडवांस में।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: Party Brunch RM2 Radio Masti.
1: आपकी मैसेजेस आ रहे हैं और ऑनेस्टली सैटरडेज को आप लोगों की एनर्जी ना अलग लेवल पर ही होती है. कोई डेडिकेशन भेज रहा है, कोई सॉन्ग रिक्वेस्ट है, तो कोई अपने खाने की पिक्चर्स भेज रहे हैं. अरे यार आप मुझे हंग्री करवा रहे हो. और बस कोई कह रहा है डीजे मूड बना दो. अरे मूड तो वैसे ही बना हुआ है, बस वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ा दीजिए. इस नमनी 2 बजे तक आपके लिए RM2 रेडियो मस्ती पर ही आपके बॉली ब्रांच में.
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

RM2 रेडियो मस्ती। ऐसे ही आपके साथ में भला हुआ हुआ डाउन, लेकिन नो वरीज, फिर से आएंगे आपके संक्षिप्त समाचार के बाद। अभी के लिए इस गाने को एंजॉय करते हैं आपकी बॉली ब्रंच में।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दिन के 12 बजे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे अर्शिता नमस्कार।
6: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्ति के अगले ही दिन चेतन बाबूलाल ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सभा में जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाना होगी। संसदीय अवकाश के बावजूद उन्होंने कई महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बताया जिन पर वे जल्द ही काम शुरू करेंगे। कॉमनवेल्थ खेलों के इस 2026 संस्करण में मॉरिशस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, दो रजत और एक ब्रॉन्ज सहित कुल 4 पदक जीतकर 74 देशों में 15वां स्थान हासिल किया है। मंत्रिमंडल ने पदक विजेता खिलाड़ियों और उनके ट्रेनरों को बधाई दी है, जबकि साइक्लिस्ट किम्बर्ली लुकोपियनो की टू डी फ्रांस महिला श्रेणी में शानदार जीत की भी सराहना की है। मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की हालिया पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में उत्सर्जन 3.4% बढ़ा, जबकि मॉरिशस में दफन किए गए कचरे की मात्रा 17% की वृद्धि आई है उसमें। मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय और चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच स्वास्थ्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के तहत चीनी विशेषज्ञ मॉरिशस में उन्नत चिकित्सा सेवाओं, प्रशिक्षण, विशेष उपकरणों और आधुनिक उपचार सुविधाओं के विकास समय सहयोग प्रदान करेंगे। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EDF यानी एम्प्लॉई डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस डिजिटल प्रक्रिया के जरिए कर्मचारी टैक्स बेनिफिट्स यानी के लाभों का दावा कर सकते हैं, जिसमें डिपेंडेंस और शुरुआती 5,00,000 रुपए तक की थ्रेशहोल्ड पर टैक्स एग्जेम्पशंस जैसी सुविधाएं शामिल हैं। एमटेल ने इस वर्ष की पहली छमाही में 320 मिलियन रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। बेहतर वित्तीय स्थिति

0: सकती कम कर्ज और मजबूत लाभ मार्जिन के साथ कंपनी ने शेयर होल्डरों के लिए डिविडेंड पेमेंट की नई व्यवस्था की घोषणा भी की है। दुनिया में जारी सबसे बड़े कोरल ब्लीचिंग संकट के बीच मॉरिशस में एक अध्ययन ने कई उम्मीद जगाई है। लाकोंब्यूज में किए गए शोध से पता चला है कि कोरल रीफ्स यानी प्रवाल भीतियों की बहाली से समुद्र के बढ़ते तापमान के प्रभावों के खिलाफ उनकी क्षमता को मजबूत किया जा सकता है, जहां कुछ संरचनाओं में 70% से अधिक जीवित रहने की दर दर्ज की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात भर हुए रूसी मिसाइल हमलों में एक बच्चे समेत कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। हमलों में कई इमारतों और वाहनों को नुकसान पहुंचा, जबकि 3 लोग घायल हुए। ये हमला यूक्रेन में हालिया रूसी हमलों में 21 लोगों की मौत के कुछ दिन बाद हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की राजधानी सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पहुंचे, ये उनकी पहली सर्बिया यात्रा है। और उधर स्पेन ने इटली से आने वाली हवाई और समुद्री यात्राओं पर सीमा नियंत्रण लागू कर दिया है। ये कदम इटली द्वारा स्पेन से आने वाले लोगों पर इसी तरह की जांच शुरू करने के एक सप्ताह बाद उठाया गया है। दोनों देशों के बीच विवाद मोरक्को से करीब 78,000 प्रवासियों के स्पेन के सेउता पहुंचने के बाद बढ़ा। स्पेन ने इटली से जांच हटाने की मांग की है, लेकिन रोम ने इसे कम से कम 15 अगस्त तक जारी रखने की बात कही। इटली ने कहा है कि सुरक्षा जोखिम खत्म होने तक वह अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचार की ओर। शोक समाचार सुनिए। सिमेट्री रोड वाकवा में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री राम दुखित जिन्हें विद्यानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले सेबास्टोपोल के रहने वाले थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके बेटे दुर्शित वर्मा दुखित के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, Body Brunch, RM2, Radio Must See.

0: वही ब्रांच
1: और रेडियो मस्ती।
2: वैसे यहाँ पर हस्तम शस्तम ही अलाउड है, यानी कि बस मुस्कुराहट, मुस्कान और गुड म्यूजिक। वेलकम बैक बॉलीब्रंच की सेकंड आवर पर, जहाँ पर गुड म्यूजिक के साथ होंगे होस्ट रेसिंग। तो दौड़ते दौड़ते चलेंगे गानों और रेसेस के बीच में, आप बस एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत वाइब को विद योर आरएमटू रेडियो मस्ती।
0: बॉलीब्रंच आरएमटू रेडियो मस्ती।

0: Holly Branch,
1: RM2,
0: Radio Masti.
2: डांस का भूत चढ़े आ रहे सैटरडे वाइब्स ऐसी होती है, फुल ऑफ एनर्जी, डांस और हैप्पीनेस से भरी हुई। 12:30 को पहला रेस शुरू हो रहा है, सो यही पर आरम जो रेडियो मस्ती पर यू स्टे ट्यून्ड, जानेंगे कि क्या होगा नेक्स्ट। अभी के लिए गाना हो जाए आप सभी लोगों के नाम।
0: बॉडी ब्रांच
1: RM2
0: रेडियो मस्ती।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: And yes, sir, do not forget, 12:30 पहला रेस शुरू होने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं सौंदर्य मास की ओर, जानते हैं कि वहां पर क्या क्या हो रहा है।

0: टू
1: रेडियो मस्ती
2: शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड
0: RM2
1: रेडियो मस्ती

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: वैसे वीकेंड का ट्रिगर कब से ट्रिगर हो गया? सैटरडे वाइब्स बिल्कुल फास्ट स्पीड में चल रही है घोड़ों की तरह. यस, बॉली ब्रंच शो ऑन गोइंग है और गानों के बीचों बीच में रेसेस के अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे. इट्स नलमनी 2 बजे तक ऑन योर आरएम2 रेडियो मस्ती एंड ऑल्सो 5491294 पर आप भेज सकते हो अपने मैसेजेस डेडिकेशंस.
0: बॉली ब्रंच आरएम2 रेडियो मस्ती.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: फरोगो फेविकोल से चिपका दो किधर। अरे ट्रेंडिंग है आजकल खुद का विजन बोर्ड बनाने का। अगर टाइम है तो वही सही। अगर बोर्ड हो रहे थे घर बैठे बैठे तो अपने विजन बोर्ड पर एड ऑन सेट डाल दीजिए। वैसे ही 4 महीने बचे हैं 2027 को, तो आप बस वो करें। और मिलते हैं कुछ ही देर में, क्योंकि संक्षिप्त समाचार होने वाला है कुछ ही देर में। सी यू इन द नेक्स्ट आवर।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North,
3: South,
4: 103.5,
2: East,
3: West,
4: 96.4,
3: Center,
4: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: It's 1 p.m. चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे विधिमा नमस्कार.
6: नमस्कार नीलमणि. सभी सुनने वालों को नमस्कार. मॉरिशस में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है. 2025 में इनमें 3.4% की वृद्धि हुई, जबकि मॉरिशस में दफनाए जाने वाले कचरे की मात्रा में 17% की भारी वृद्धि हुई. स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस की पर्यावरण की स्थिति पर आई नवीनतम रिपोर्ट में ये बात सामने आई है. स्वास्थ्य मंत्रालय और पेकिंग यूनिवर्सिटी थर्ड हॉस्पिटल के बीच हुए समझौते से मॉरिशस को वैस्कुलर डिजीज, रेडियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में चीनी विशेषज्ञों की विशेषज्ञता, उन्नत उपकरणों और प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा. सरकारी और निजी कर्मचारी 30 जून 2027 को समाप्त होने वाले टैक्स वर्ष के कर लाभों का दावा करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल EDF यानी एम्प्लॉय डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं. 320 मिलियन रुपए ये इस साल की पहली छह माह में एमटेल का मुनाफा है. ये टेलीकॉम ऑपरेटर घटते कर्ज और मजबूत होते मार्जिन के साथ एक मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दिखा रहा है. ये नतीजे शेयर होल्डरों को भी फायदा पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि समूह अब उन्हें साल के अंत में डिविडेंड प्राप्त करने का एक नया तरीका प्रदान कर रहा है. और विदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो DRC में इबोला के 4000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं. इसे देखते हुए WHO के विशेषज्ञों ने बिना टीके वाले घातक बुंडीबुग्यू स्ट्रेन के खिलाफ मौजूदा टीके के बड़े पैमाने पर मानव परीक्षण की सिफारिश की है. तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई. थोड़ी देर में शोक समाचार. निजी शोक समाचार सुनिए. भगेलू लेन मोफेसिल न्यू ग्रोव में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मणिबाई नवजी, पैदाइशी नाम सुकिया और जो मित्रा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके पति धनंजय नवजी के घर भगेलू लेन मोफेसिल न्यू ग्रोव से उठाकर रोजबेल की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 1:30 फ्री. रोड प्रोविडेंस कल्सी मिलिटिया में 61 साल की 61 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी चेमैन, पैदाइशी नाम मोदिली और जो अम्मा चेमैन नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं. उनके अर्थी आज सुबह 3:30 बजे उनके घर रोड प्रोविडेंस कल्सी मिलिटिया से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमिशन टूडे एट 1:30 फ्री. कांग आकाशिया पुस दु फ्लाक में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री बुद्धराम गुना, जो विजय नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज सुपहर 3:00 बजे उनकी पत्नी श्रीमती रजनी गुना के घर कांग आकाशिया पुस दु फ्लाक से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि दी जाएगी. परमिशन टुडे एट 3:00 PM. सिमेट्री रोड वाकवा में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री राम दुखित, जो विधानंद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. उनके अर्थी आज 4:00 बजे उनके बेटे दर्शित

0: धमाल दुखित के घर सिमिचर रोड वाकवा से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे और 4 PM शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: वैसे कुछ लोगों का सैटरडे अभी भी वर्किंग सैटरडे है, कुछ लोग ब्रंच कर रहे हैं और कुछ लोग होस्ट रेसेस फॉलो कर रहे हैं लाइव, और तो कुछ घर बैठे बैठे अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। बेसिकली सबका सैटरडे अलग है, लेकिन साउंड ट्रैक एक ही है आपके RM2 रेडियो मस्ती पर। 1:40 पर तीसरा रेस शुरू होने वाला है। अभी के लिए बिग हेलो टू जना जी जो साथ दे रही है, फ्लैग से आप कनेक्टेड है। नेक्स्ट गाना आपकी बेटी रीमा, जनिता, शेषता, अंशनी, सिल्विया, यूवी, कृषि के नाम करते हैं। सो लेट्स डाइव राइट बैक विद द म्यूजिक, इस बार धुरंधर वाली वाइब्स के साथ।
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: कभी कभी किसी प्लान की जरूरत नहीं होती है, बस अच्छा म्यूजिक, कुछ खाने को और अपना फेवरेट कॉर्नर. आज का बॉली ब्रंच इसी सिंपल सैटरडे हैप्पीनेस के नाम करते हैं. थोड़ी देर में सिर्फ रेस स्टार्टिंग सून, यही पर स्टे ट्यून्ड.
1: रेडियो मस्ती सुनते रहो.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: जाने से पहले एक लिटिल रिमाइंडर है आपके लिए कि वीकेंड का मजा तभी आता है जब आप खुद भी उसका हिस्सा बनो। थोड़ा रेस्ट, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा गुड फूड और अपने लोगों के साथ थोड़ा टाइम। RM2 रेडियो मस्ती यही पर है। म्यूजिक का पार्ट तो संभाल ही रहे हैं हम। अब बस खुश रहे, कनेक्ट रहे एंड स्टे सेफ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं। सी यू टुमारो।
0: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Rapid Peanut Butter, creamy and crunchy premium peanut butter.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Wish you all a very good afternoon. Check your time. It's already 2 p.m. संधि है संक्षिप्त समाचार विधिमा के साथ आपको नमस्कार विधिमा
6: नमस्कार हंसनी सभी सुनने वालों को नमस्कार आज सुबह पोर्टलुई स्थित सेंट्रस बिल्डिंग में एमएसएम ने एक प्रेस सम्मेलन लगाया जोले जोंगा ने राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की फ्लाक में हुई हालिया जुटाव संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना नए विपक्ष के नेता की नियुक्ति और वेहोनिकलो गोविंद का इस्तीफा शामिल था आज सुबह बैन में प्रेस से मुलाकात करते हुए पुल बेहोंशे ने विपक्ष के नेता के रूप में चेतन बाबूलाल की नियुक्ति पर टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुसार ये निर्णय गणराज्य के राष्ट्रपति का होता है उन्होंने ये भी घोषणा की कि जोआना बेहोंशे के को विपक्ष के व्हिप के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा फॉर्मी प्रोग्रेसिस के नेता ने संस्थागत संवाद पर आधारित शासन करने के एक नए तरीके की इच्छा जताई है मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं नए विषयों लोअर सेकेंडरी में अधिक विकल्पों और तकनीकी धाराओं के विकास पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है मीडिया रिव्यू के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक रणनीतिक बैठक में इन विचारों पर चर्चा की गई इसका उद्देश्य छात्रों और देश की भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को बेहतर ढंग से ढालना है और विदेश में अमेरिका के पश्चिमी राज्यों में जंगल की आग बुझाने के दौरान दो बड़े हादसे हुए हैं यूटा में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें दो लोग सवार थे तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद नमस्कार
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: रेडियो मस्ती शॉपिंग एंटरटेनमेंट और फैमिली फन का सबसे बड़ा फेस्टिवल उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI ML एंड LIC मॉरिशस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12-16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड.
1: Malgré une conduite prudente, ma voiture a récemment été endommagée dans un carambolage. Sur le coup, vu l'étendue des dégâts, je me suis dit que les démarches au niveau des assurances seraient longues et pénibles. Mais la SICOM, mon assureur, a été vraiment à l'écoute. Expertise des dégâts, feu vert rapide pour les réparations, véhicule de remplacement selon les modalités de mon contrat d'assurance. La SICOM a été au top. Et aujourd'hui, je retrouve mon véhicule comme si c'était le premier jour. Contactez la SICOM ou un de ses représentants pour tout conseil ou rendez-vous sur le www.sicom.mu pour un devis d'assurance gratuit. Conditions applicables.
2: SICOM Group, a lifetime commitment.
0: RM2 Radio Musti.
3: Plug and play.
0: RM2
4: आफ्टरनून टाइम इन मॉरिशस से 2:08 हो चला है. सबका वेलकम ऑन रेडियो मस्ती. स्पेशल थैंक यू टू अवर लवली नीलमणि शू इज हियर फॉर आज का बॉली ब्रंच. और अब एक नया शो शुरू हो गया है, दैट्स आवर प्लग एंड प्ले. यहाँ पर सभी का वार्म वेलकम है इन द शो. अभी से लेकर अब 4 PM तक यहाँ पर आ गई है हंसनी आप लोगों का साथ निभाने के लिए. चलिए हम सभी को विश करेंगे अ वंडरफुल आफ्टरनून. यहाँ पर आज भी हम लेकर आएंगे अ सुपर्ब कलेक्शन ऑफ कोर्स टू एंटरटेन यू एंड टू मेक इट अ ब्राइट डे. और कई जगहों पर इस समय धूप खिली हुई है, लवली सनशाइन, इट्स अ ब्यूटिफुल डे. और ऐसे हसीन मौसम में लाजवाब गाने तो बनते हैं ना. ऑफकोर्स बिल्कुल सही है, टू मेक इट जबरदस्त डे अहेड. तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, टू जॉइन अस एक छोटा समय से. अगर आप फ्री हो तो ड्राइव करते समय या प्लीज़ मोबाइल

0: फोन को आप इस्तेमाल ना करें, यही आपके लिए सेफ रहेगा। और अगर घर पर होकर या फिर काम पर होकर कुछ फ्री टाइम में अभी आप रेडियो के साथ जुड़े हुए हो तो आप ही का इंतजार हम करने वाले हैं ताकि कुछ बात आप कर सकें, कुछ फीलिंग्स जो आप शेयर करना चाहेंगे ये तो मुमकिन हो पाएगा थैंक्स टू रेडियो मस्ती। सो इसी का बंदोबस्त हमने कर लिया है टू वेलकम योर मैसेजेस। यहाँ पर करेंगे आप लोगों का इंतजार ऑन 54991294। और कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे शॉडमॉस पोर्ट रेस की तरफ, हम बढ़ेंगे जहाँ पे लगने वाला है द रेस फॉर। सो फॉर दी अपडेट्स यहाँ पर गानों के लिए बिल्कुल ये जो म्यूजिकल सफर है शुरू हो गया है, आप लोगों के आने से कुछ और खास रंगीन हो जाएगा। तो जहाँ पर भी बस आपने सुनना शुरू किया है, मे बी अभी आपने अपना रेडियो सेट ऑन कर लिया है, इट्स अ वार्म welcome.
1: Plug and play. RM2. Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती, जहां पर लाजवाब गाने हैं वहीं पर आपका साथ भी तो है। इतना लवली है आज का ये दिन जो सफ़र हम बिता रहे हैं आपके साथ, तो हमने सोचा लेट अस मेक इट अ बिट मोर स्पाइसी, मोर स्पेशल। व्हाई नॉट एक गेम हो जाए, एक रकों को हो जाए। क्या पता सुबह से आप ट्राई कर रहे थे अपने लक को, तो इस बारी आपका गुड लक अच्छा जाए। एंड यस, यू कैन विन। द गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड, जहां पर आप खेलेंगे एमबीसी के साथ एंड राजस्थान वर्क्स एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस। यहां पे एक चांस है टू विन चार एंट्री टिकट्स प्लस वन फूड कूपन फॉर द जेन्स लिटिल इंडिया शाही थाली एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल, पावर्ड बाय एसबीआई एंड एलआईसी। उत्सव जो शुरू होगा फ्रॉम 12 अगस्त 2026 और चलेगा 16 अगस्त तक एट एसवीआईसीसी पाय आज फ्रॉम 10 AM टू 9 PM। तो वहां पर लॉट्स ऑफ मस्ती अवेटिंग यू फॉर 5 डेज, जहां पे ढेरों शॉपिंग्स होने वाली है, एंटरटेनमेंट एंड लॉट्स ऑफ फैमिली फन भी होने वाला है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हम आपको बताएंगे वहाँ पर। दैट विल बी ऑल अबाउट शॉपिंग, इंटरनेशनल होम शॉपिंग, एंटरटेनमेंट शोज, मैजिक शोज, फैशन शो, लाइव परफॉर्मेंस बाय इंडियन आइडल सिंगर परिणय जैन, स्पेशल अपीयरेंस बाय धर्मेश सर, कानवा शो, ब्लड डोनेशन कैंप एंड फूड फेस्टिवल, जहाँ पे लजीज खाना तो मिलने वाला है। ऑल ऑर्गेनाइज बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो प्राइजेस है हमने आपको बता दिए है कि क्या आपको मिलने वाला है फॉर द दर्शकों को। यहाँ पर अब बारी है फॉर द क्वेश्चन, राइट। बहुत इजी वन है, रिलेटेड टू बॉलीवुड। एक्चुअली एक ऐसी मूवी जो हाल ही में मना गया अपना 26 ईयर्स, एक ऐसी मूवी जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2000। कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। We had Raj Sharma as Raju and Romy. We can say that वो Raju था और Romy भी। साथ में we had Janvi and Pooja. और movie जो है was released in the year 2000 और movie was directed by Raj Kanwar. तो हम किस मूवी के बारे में बात कर रही हैं? अगर आपके पास सही जवाब आ गया है तो जल्दी से फटाफट लिखिए सही जवाब ऑन 54991294। डोंट फॉरगेट, आपका पूरा नाम, एड्रेस, ये सब प्लेस आप लिखिए ताकि आप इन हो जाए फॉर द लकी जो, राइट। सो चलिए राइट आंसर्स के इंतजार में हंसनी है और पूरे टीम के साथ हम आए हैं टू विश यू ऑल द बेस्ट।
0: प्लग एंड प्ले
1: RM2।
0: प्लग एंड प्ले

0: plug and play.
1: RM2.
2: जी हाँ, हम और आप और ये सफर जो बिल्कुल सेट हो गया है विद द प्लग एंड प्ले. और यहाँ पर था एक सवाल, एक ऐसी मूवी जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2000 और हाल ही में जो मूवी थी ना सेलिब्रेटेड इट्स 26 इयर्स. ओह माय गॉड, इट्स रियली अ लॉन्ग वे. और कहानी कुछ इस तरह से थी, वी हैड रोमी, यस राजू भी था ऑन द मूवी, और जानवी एंड पूजा. दैट वाज अ क्यूट लव स्टोरी. हम किस मूवी के बारे में बात कर रहे थे? राज कंवर की बनाई हुई मूवी थी. एंड सही जवाब, इट्स हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, वो रेडियो मस्ती सुनेगा और स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड रह जाएगा विद द रेडियो, वन एंड ओनली रेडियो स्टेशन. तो सही जवाब, इट्स हर दिल जो प्यार करेगा वो क्या करेगा एक्चुअली, ये आप बताएंगे ऑन 5499 1294. सो यहाँ पर सही जवाब है और लकी जो के द्वारा कौन यहाँ

इट्स हर दिल जो प्यार करेगा, जिसमें नजर आए थे सलमान खान एंड वी हैड अ प्रेजेंटा एंड द ब्यूटीफुल रानी मुखर्जी और की हस्की आवाज। तो यहाँ पर बॉलीवुड रिलेटेड था एक सवाल और लकी नाम जो आया है वो तो नुबर फॉन्स की रहने वाली है और नाम है उनका शैली मंदारी। कंग्रेचुलेशन टू यू शैली, आपकी जीत हो गई है। यस, और डेफिनेटली आप जा रही हो विद चार एंट्री टिकट्स एंड वन फुट क्यूपन फॉर द जेंट्स लिटिल इंडिया शाही थाली। आप जाएंगी एट द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल पावर्ड बाय SBI एंड LIC। शुरू होगा वो बड़ा इवेंट 12 अगस्त को और खत्म होगा 16 अगस्त तक जाएगा ये स्पेशल इवेंट। आज SBICC पाई शुरू होगा फ्रॉम 10 AM टू 9 PM ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स लिमिटेड। तो चलिए हम सुनी और पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कंग्रेचुलेशंस आपको।

0: जिससे आप लोग जी रहे हो, म्यूजिकल आप बन रही हो, ये तो बहुत खूब है। वैसे हम तो कहेंगे आप सभी को कल की चिंता में आज को मत खोइए, हर पल को अपनी खुशी से बस आप संजो लीजिए। जिंदगी है खूबसूरत, बस इतना याद आपको रखना है, हर जो अपना दिन है ना उनको आप खुलकर जियो, अपने अंदाज में जियो, क्योंकि हर सुबह हर एक दिन एक नई कहानी लेकर आती है, हर शाम कुछ यादें तो दे जाएगी डेफिनेटली। ये तो है, जो पल आज है वही सबसे खास है ना, इसलिए अपना हर दिन जियो, क्योंकि जिंदगी एक वो एहसास है। वी आर हियर टू लिव जिंदगी एंड टू मेक इट वंडरफुल, टू मेक इट कलरफुल, और हमें तो चाहिए सो मेनी रीजंस टू स्टे हैप्पी, लेकिन अगर आप ढूंढ लेंगे एक तो एक ही काफी रहेगा टू स्टे हैप्पी। तो यहाँ पर फुल वाइब्स, गुड वाइब्स के साथ हंसनी है आप लोगों के संग ऑन रेडियो मस्ती, दिस इज आवर प्लग एंड प्ले, रियली एंजॉयिंग द शो, और जहाँ पर भी साथ जा रही है आपका, इट्स अ वार्म वेलकम। आई रियली होप कि आप भी एंजॉय कर रहे हो, गुनगुना रहे हो, अच्छी बात है जब ऐसा गाना चलते हैं तो गुनगुना हम लेते हैं, और अंदर ही अंदर जो स्ट्रेस है, जो दिल परेशान रहता है मे बी, तो सब बाहर आते हैं एंड वी फील लाइक स्ट्रेस फ्री, क्या ख्याल है। जॉइन अस इवन फॉर द सेकंड आवर जो आने वाला है After 3 PM, that will be plug and play up till 4. और यहाँ पर इशारा है कि कुछ ही पल में हम बढ़ेंगे शॉट मोस्ट सपोर्ट रेस, जहाँ पे लगने वाला है द नेक्स्ट रेस, दैट विल बी रेस 5. यस, सो फॉर द अपडेट्स स्टे वेल कनेक्टेड।
1: प्लग एंड प्ले,
2: RM2
1: प्लग एंड प्ले।

0: Tag and play.
1: RM2.
2: एक्चुअली ये एक ऐसा गाना है विच रियली रिलेट्स कि जिंदगी क्या है. एक्चुअली अपना हर दिन जियो, हर पल मुस्कुरा कर जियो. क्या पता कल मिले या ना मिले ये सफर, जो मिला है आज उसे दिल से जी लीजिए. जिंदगी तो छोटी ही है ना, इसे खुल कर जीना है. और

0: RM2, Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: Good afternoon, everyone. I'll check your time. It's at 3 p.m. सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ आपको नमस्कार विधिमा
3: नमस्कार हंसनी सभी को नमस्कार आज सुबह पोर्टली स्थित सन ट्रस्ट बिल्डिंग में एमएसएम ने एक प्रेस सम्मेलन लगाया जूली जोंगर ने राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की फ्लक में हुई हालिया जुटाव संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना नए विपक्ष के नेता की नियुक्ति और वेहोनिकलो गोविंद का इस्तीफा शामिल था आज सुबह इबन में प्रेस से मुलाकात करते हुए पुल बेहोंशे ने विपक्ष के नेता के रूप में चेतन बाबूलाल की नियुक्ति पर टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुसार ये निर्णय गणराज्य के राष्ट्रपति का होता है उन्होंने ये भी घोषणा की कि जुआना बेहोंशे को विपक्ष की व्हिप के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा फॉर्मिलिटा प्रोग्रेसिस के नेता ने संस्थागत संवाद पर आधारित शासन करने के एक नए तरीके की इच्छा जताई है मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं नए विषयों लोअर सेकेंडरी में अधिक विकल्पों और तकनीकी धाराओं के विकास पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है मीडिया रिव्यू के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक रणनीतिक बैठक में इन विचारों पर चर्चा की गई और विदेश में भारत में मानसूनी बारिश का कहर जारी है दिल्ली गुरुग्राम में जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं मौसम विभाग ने दिल्ली यूपी और बिहार सहित 15 राज्यों में भारी बारिश आंधी तूफान और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आपके ध्यान के लिए धन्यवाद नमस्कार
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: All right, be musical with the Radio Masti, and here we have got some dedications, some messages, और इसके तुरंत बाद हम बढ़ेंगे पोर्ट वेस ऑटोनोमस जहाँ पे लगने वाला है द नेक्स्ट रेस. जो घोड़ी है वो तो बिल्कुल रेडी तैयार हो रही है. इन द मीनवाइल चलिए कुछ मैसेजेस हम पढ़ेंगे. We have Sonu from Catabon. I'm in a shop and Radio Masti is on loud volume just to enjoy your songs, Hansini. And बेशक आपका हम welcome करना चाहेंगे, and जितने भी आपके यहाँ आए हैं क्लाइंट्स, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, हम सभी का वेलकम करना चाहेंगे. थैंक यू एंड विश यू हैप्पी शॉपिंग. यहाँ पे मिस्टर खेमराज आए हैं फ्रॉम क्यूपेप. कैसे आप हो मिस्टर खेमराज? रेडी होप कि सब ठीक ठाक है. यहाँ पर गाना सभी बिसराम परिवार के लिए एंड फॉर समवन रियली वेरी स्पेशल. ओके जी, सो उस खास के लिए ज़रूर एक गाना चल जाएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग, अप्रिशिएटिंग द सॉन्ग कलेक्शन ऑफ प्लग एंड प्ले. यहाँ पर अभी का साथ फ्रॉम गोपो. कैसे हो अभी जी? रियली होप कि सब ठीक ठाक है एंड हैविंग अ वंडरफुल आफ्टरनून विद रेडियो मस्ती. मेरे लिए एक गाना हो जाए फॉर माय लव किरण के लिए, जो कुछ नाराज हो गई है, सुबह से रोटी हुई है, बस उनको मनाना आप चाहेंगे. वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही सोचा है. कहते हैं जब गाना चल जाता है तो म्यूजिक इट्स लाइक अ मैजिक, सो चल ही जाता है. और अगर वो रूठ गई है तो उनको मनाएंगे. राइट ऑन, दिस इज द मैजिक ऑफ रेडियो मस्ती. अगर कोई रूठा हुआ है तो हम मना लेते हैं, कोई गुस्सा है तो मना लेते हैं म्यूजिक के द्वारा, और उदास है तो उदासी को दूर करने के लिए मरहम लगाते हैं रेडियो मस्ती. एनी हाउ, यहाँ पर कनेक्शन बन गया है आप लोगों से ऑन 549-1294 फॉर योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस. चलिए यहाँ पर गाने की तरफ हम बढ़ेंगे. आज तो इतना मदमस्त है ये माहौल, मदमस्त है ये प्लेलिस्ट. रियली होप कि आप बस एंजॉय कर रही हो हमारे साथ. अप टिल 4 पीएम मौज हंसनी विद यू फॉर आज का प्लग एंड प्ले.
0: प्लग एंड प्ले.
1: RM2.
0: प्लग एंड प्ले.

Thank you so much for connecting with the best of romantic music or dhamakedar songs right on Radio Masti. Always and forever, आप लोगों का साथ मिलता रहता है, so इसके लिए हम तो है शुक्रगुजार. Thank you for joining in for आज का plug and play. यहाँ पर हंसनी है आपके साथ and of course जो Masti भरे गाने हैं हम चलाते रहेंगे क्योंकि हम सब बन रहे हैं Radio Masti के साथ Masti सारे. A big big hello to Yuvraj and Yuvansh. Hello my boys, welcome on the radio. यहाँ पे on the way to have some more Masti. तो यहाँ पर lots of love and love you and miss you वाला message coming from Papa Mahen, from Mama and yeah, happy holidays to you. Have fun.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: हम सफर ऐसा हो जो खामोशी भी पढ़ लें, आंखों में छुपे हर दर्द को समझ लें। साथ चलना तो हर कोई चाहता है ना, मगर जो गिरने पर संभल लें वही सच्चा हम सफर होता है। हम सफर के लिए था ये स्पेशल पेशकश, और यहाँ पर रिलेटेड टू हम सफर वाला गाना एक शायरी यहाँ पर आ गई है। तो साथ हो तो हर सफर आसान लगता है, तो साथ हो तो हर सफर आसान लगता है, तेरे बिना ये दिल थोड़ा वीरान लगता है। मंजिल की चाहत अब कहाँ रही, तो हम सफर हो तो हर रास्ता खास लगता है। जिंदगी के सफर में बस इतना सा अरमान रहे, हर जन्म में तू ही मेरा हम सफर रहे। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, तेरा साथ मेरे हाथों में हमेशा रहे। That's a lovely one coming from Rishabh ji. Thank you for connecting with the best of songs right on Radio Masti. Shuruaat se strongly connected just to enjoy Plug and Play aaj. And aaj ghar par kuch aaram farmate hue, you just want to listen to the best of songs jo chal raha hai actually. Aur that was specially aapke liye and for all your dear ones jo yahan par bas hum safar bane hue hai. Thank you for loving the show. Vishal ji ka saath from Port West. यहाँ पर गोइंग टू वर्क राइट नाउ एंड कुकाश टू वंदना एज वेल, वो भी तो काम के लिए रवाना हो रही है। सो शी विल बी वर्किंग हर 24 आवर्स शिफ्ट। सो कुकाश टू वंदना, और गाना एक रोमांटिक सॉन्ग उनके लिए प्लीज हो जाए। ऑफकोर्स चल जाएगा नेक्स्ट गाना फॉर यू एंड फॉर वंदना के लिए भी, जो यहाँ पर साथ निभा रही है। हेलो टू सूरज भाई, यहाँ पे लव एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फ्रॉम ऑल सजडा परिवार जो यहाँ पर कनेक्टेड है टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ म्यूजिक। थैंक यू वेरी वेरी मच। हेलो टू रवि आरवे जे, आपका भी साथ जारी है लिसनिंग टू प्लग एंड प्ले। यहाँ पर एक गाना तो बनता है ना, टू मेक इट जॉली गुड आफ्टरनून। वी हैव अनुषा फ्रॉम सीजीएम मिल फॉर साइड, आपका वेलकम है। नेक्स्ट ब्यूटिफुल गाना जाएगा फॉर चाची मीला मघु के लिए, सेलिब्रेटिंग हर जन्मदिन आज। विशेष कमिंग फ्रॉम मोल मघु शिव दयाल परिवार, जो मीला को विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे। ऑल्सो फॉर फ्रेंड पूनम, फॉर चाचा अनिल बल्दिनी एंड आपके बॉस के लिए भी, जो यहाँ पर काम करते हुए साथ निभा रहे हैं राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती।
0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.

जी हाँ बिल्कुल, दम तो है हमारे गानों में, इसीलिए दमदार चलाते हैं आप सबके लिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है विद वेटमस्टी जस्ट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ म्यूजिकल शोज। अभी 4 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद आएगी दिव्या लेकर आज का बॉलीवुड टकटकाटर, जबकि मुलाकात तो हमारी होगी दोबारा कल। तब तक के लिए स्टे सेफ, आई विश यू अ हैप्पी इवनिंग अहेड एंड टेक वेरी गुड केयर।

0: 4:03 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। टीना से नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। आज पोल्ट्री स्थित सेंट्रल बिल्डिंग में MSM ने एक प्रेस सम्मेलन लगाया, जो लिवजोंगा ने राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की फ्लैग में हुई हाल या जुटाव, संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना, नए विपक्ष नेता की नियुक्ति और वेरोनिक लुगोविन का इस्तीफा शामिल था। और आज इबन में प्रेस से मुलाकात करते हुए पल बहुजे ने विपक्ष नेता के रूप में चेतन बाबूलाल की नियुक्ति पर टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुसार ये निर्णय गणराज्य के राष्ट्रपति का होता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जोआना बहुजे को विपक्ष के व्हिप के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के नेता ने संस्थागत संवाद पर आधारित शासन करने के एक नए तरीके की इच्छा जताई है। मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए विषयों, लोअर सेकेंडरी में अधिक विकल्पों और तकनीकी धाराओं के विकास पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। मीडिया रिव्यू के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय, मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक रणनीतिक बैठक में इन विचारों पर चर्चा की गई। उसका उद्देश्य छात्रों और देश की भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को बेहतर ढंग से ढालना है। विदेश में वर्तमान समय में जापान एक गंभीर जनसंख्या संकट से जूझ रहा है। देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और जन्मदर लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। चिंता का विषय यह है कि अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो अनुमान इस बात की तेज है कि साल 2060 तक जापान की कुल आबादी घटकर 10 करोड़ से भी कम रह जाएगी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: किसके चाहत में आप पागल हो चुके हैं, किसके चाहत में आप थोड़े से दीवाने हो चुके हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और हम तो जानना ही चाहते हैं कि आजकल व्हाट आर यू अप टू। एंड देखिए, अगस्त महीना तो अभी अभी शुरू हुआ है, कुछ आपके प्लान्स होंगे, कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, और हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि जो भी आपने सोच रखा है वैसा वैसा आपके साथ होता रहे। वैसे ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, और साथ में कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आ जाते हैं जिसकी शायद आपने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ एंड द शो मस्ट गो ऑन। तो चलिए, आई जस्ट होप कि आप हर एक सिचुएशन में हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और आपको हंसता हुआ देखकर हम बहुत ही खुश होते हैं। सो चलिए, शाम के 4:11 हो चुके हैं। वेलकमिंग यू इन योर म्यूजिक टक टकाटक टिल 7 PM, जहाँ पर दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। एंड चलिए, ये अगला गाना खासतौर से उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डेफिनेटली हम आपसे प्रॉमिस करते हैं दैट यू गोना हैव लोड्स ऑफ मस्ती एंड नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट टिल 7 PM। चुन चुन कर ऐसे गाने ही लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि यू आर वाइबिंग विद ईच एंड एवरी गाना। सो चलिए, ये अगला गाना खासतौर से हम उन दो लोगों के लिए डेडिकेट करेंगे जो अभी ड्राइव करते करते एबन साइड की ओर पहुंच चुके हैं, और आप लोग इस वक्त शायद ड्राइव कर रहे होंगे एंड यू हैविंग द बेस्ट ऑफ योर मोमेंट्स। एंड आई जस्ट होप कि आप ऐसे ही हमेशा दोनों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, एंड आपकी दोस्ती ऐसे ही सलामत रहे। एंड द नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट आप दोनों के नाम जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं व्हाइल ड्राइविंग।
0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: हाय क्या बात है, ऐसे गाने चलेंगे तो सच में ऐसा लगेगा ही कि मर जावा मिट जावा। ऐसे गाने पे मर मिटने का मन ही होता है। और चलिए यहाँ पर कुछ और ऐसे गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसको सुनने के बाद यू विल फील गुड। और हम तो यही चाहते हैं कि जो फील गुड वाला फैक्टर है वो आपके मन से कभी फेड ना हो। दिस शुड बी गोइंग ऑन। एंड साथ में अगर मूड थोड़ा सा ख़राब है तो आपके मूड को एकदम सेट करने के लिए हम कुछ बातें करेंगे आपस में। और साथ में we will be welcoming your messages on 5499-1294 and promise करते हैं कि कुछ ही देर में लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट। yes, आज सैटरडे है तो हम मदर क्रिसमस बन के आ गए हैं आप लोगों को थोड़ा सा गिफ्ट देने के लिए। सो आप तैयार हो जाइए और हम भी क्वेश्चन के साथ रेडी हो जाते हैं और इसके बाद हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए ये ज़बरदस्त और बढ़िया सा गेम। ऑल यू हैव टू डू इज़ पार्टिसिपेट विद अस ताकि आपको मौका मिल पाए इस गिफ्ट को जीतने के लिए। और आपको तो पता है कि गिफ्ट जीतने के लिए आपको हमारे साथ खेलना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। और क्या पता आज आपका लक आपके साथ हो। सो कीप ऑन ट्राइंग योर लक। एंड वैसे कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सो कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड।
0: म्यूजिक टकटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: म्यूजिक टक टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वेल, शाम के 4:35 हो चुके हैं एंड वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द रेसेस इन फ्यू मिनट्स। लेकिन इससे पहले एक गेम हो जाए आपके साथ और हम खेल रही हैं मॉरिशस शॉपिंग फेस्टिवल के साथ एंड दिस गेम इज पावर्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड। आपको मिल रहा है मौका टू प्ले विद MBC एंड राजस्थान वर्क्स लिमिटेड और जीतने के लिए आपको मौके मिल रहे हैं टू विन एक्साइटिंग प्राइसेस। तो चलिए, अगर आपकी जीत होती है आपको मौका मिलता है टू विन 4 एंट्री टिकट्स एंड 1 फूड कूपन फॉर द जैन लिटिल इंडिया शाही थाली द उत्सव इंडिया मॉरिशस शॉपिंग कार्निवल। ज्यादा डिटेल आपको थोड़ी देर में देंगे, लेकिन आपसे हम सवाल यही करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको बस सिंपली अगला गाना सुनना है और हमें बताना है कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है, अगला गाना कौन सी मूवी से लिया गया है। वेटिंग फॉर योर राइट आंसर्स। लेकिन आपको पूरा नाम और पूरा पता भेजना है ताकि हम लकी ड्रॉ में आपका नाम कंसिडर कर पाए। So don't forget, अगला गाना सुनने के बाद you have to tell me कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है, पूरे नाम और पते के साथ। All the best.
0: Music,
1: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: चलिए यहां पर हमने आपसे एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले और हमने पूछा था कि जो गाना हमने आपको सुनाया था आपको हमें बताना था कि ये गाना कौन सी मूवी से लिया गया है एंड गाना वाज मेरा जियरा तरसे फॉर यू बेबी नाउ अभी पूरा गाना तो मैं नहीं गा पाऊंगी गला थोड़ा ख़राब है तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारे साथ खेला है और काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिए एंड द राइट आंसर इज प्रिंस येस प्रिंस इज द राइट आंसर एंड बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए बट लकी ड्रॉ करने के बाद हमारा लकी विनर है गणेशन वेंकटन from Saint Hubert. Congratulations to you, Ganesan. You are winning 4 entry tickets and 1 food coupon for the Gents Little India Shahi Thali at the Utsav India Mauritius Shopping Carnival powered by SBI and LIC. And it will start as from 12 August to 16th August 2026 at SVI CCPI as from 10 a.m. till 9 p.m. And you will get a chance to experience 5 days of shopping, entertainment and family fun featuring international home shopping, entertainment shows, magic shows, fashion show, live performance by Indian Idol singer Parinay Jain, special appearance by Bollywood choreographer Dharmesh Sir, Kanma show, blood donation camp, food festival. Ye sara kuch aapko mauka milega experience karne ke liye. And it's organized by Eventworks Limited. And just to let you know, Ganesan, that our team will get back to you ki aapko kis tarike se apne is gift voucher ko receive karna hai. Yes, they will let you know how you are expecting to receive this gift voucher. Aur thank you so much once again hamare saath participate karne ke liye. And ye agla gana goes out specially for you and your family. And once again, congratulations.
0: Music, Tuk Tuk.
1: RM2 Radio Musti.

0: FM2.
1: Radio Musty.
2: Un bon petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Et les vies plus agréables avec un bon dipé à pistache. Rapid Peanut Butter, un produit premium, 0% cholestérol, 0% transfat et riche en protéines. Qui danse l'emballage bleu crunchy ou l'emballage rouge creamy ou pour régaler avec Rapid Peanut Butter. Rapid Peanut Butter, a premium product at half the market price. Importé et distribué par RR Rapid Services Limited.
3: Dans quelques heures auront lieu les tirages du Loto et du Loto Plus. Le jackpot du Loto Plus est à environ 6 millions de roupies et celui du Loto est estimé à 12 millions de roupies. La chance pourrait bien vous sourire aujourd'hui, mais écoutez bien, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter. Nos réservoirs se vident. Plus que jamais, chaque litre d'eau compte. Fermez les robinets, chaque petit geste. Aujourd'hui fait une grande différence, demain.
4: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance, jouez responsablement.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: Music
1: RM2 Radio Musty.
5: शाम के 5:13 हो चुके हैं. एक नजर में भी प्यार होता है. आप इससे अग्री करते हैं या फिर नहीं है तो हम जरूर जानना चाहते हैं. भाई आप तो हमसे अग्री जरूर करेंगे अगर आपने एक नजर में ही प्यार किया है. लेकिन जिन लोगों का एक नजर में ही प्यार नहीं हुआ है, लव एट फर्स्ट साइट जैसे कहते हैं, अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो शायद आप हमसे सहमत नहीं होंगे. लेकिन जिंदगी में अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां होती हैं और जिस तरीके से आपकी प्रेम कहानी शुरू होती है वो भी अलग तरीके से ही शुरू होती है. सो नो कंपैरिजन स्पेशली बिटवीन लव स्टोरीज. तो चलिए यहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 7 PM. इट्स योर म्यूजिक टकटकाटक जहाँ पर कुछ और खूबसूरत गीत के साथ हम हाजिर हो चुके हैं. एंड चलिए नॉन स्टॉप ऐसे ही आप लोगों के लिए गाने और साथ में आपके मैसेजेस ऑन 5499.

0: म्यूजिक चटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: आपका दिल दीवाना आपसे क्या कहता है, जरूर उसकी सुन लीजिए, क्योंकि कहने को तो दीवाना दिल होता है लेकिन दिल एक्चुअली दीवाना नहीं होता है, वो बहुत ही समझदार होता है और इसीलिए आपका दिल जो भी कहे उसको मानना जरूर चाहिए। 5:30 PM ऑलरेडी दिव्या का साथ इन योर म्यूजिक टकाटक टिल 7 PM। चलिए कुछ ही देर में बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर, तो चलिए अगर आप उस पार से हमारा साथ दे रही हैं एंड आपका भी मन हो रहा है हमें मैसेजेस भेजने के लिए, तो हम जरूर आपका इंतजार कर रहे हैं ऑन 5499-1294।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: चल रहे हर सैटरडे की तरह हम एक बार फिर से फैशन टिप्स लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए और अभी के लिए हम बात करेंगे डिफरेंट इयररिंग्स और हेयर स्टाइल के बारे में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि आप किस तरीके से अपने चेहरे को ब्यूटीफुली फ्रेम कर सकते हैं. कभी कभी हमारा बहुत ही अच्छा फीचर होता है, आपका जो लाइन भी बहुत ही डिफाइंड वाला होता है, लेकिन फिर भी हम ऐसे तैयार हो जाते हैं जिसके चलते हम अपने चेहरे को डिफाइन या फिर टेक्स्चर बनाने में असफल हो जाते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू रियलाइज कि आप किस तरीके से अपने चेहरे को एक आर्ट की तरह सजाने और इसको एनहांस करने की कोशिश करें. तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि कभी भी अगर आपने हाई नेक या फिर टर्टल टॉप जिसको हम कहते हैं इसको आपने डाला है, आजकल तो विंटर सीजन चल रहा है, कभी आप पार्टी करने जा रहे हैं या फिर ऐसे ही कैजुअली आप निकल रहे हैं काम पर जाने के लिए या फिर कोई रैंडम मीटिंग्स, तो

आपने अगर कभी भी टर्टल नेक वाला टॉप या फिर हाई नेक टॉप पहना है तो इससे आपका हेयर स्टाइल बहुत ही डिफाइंड होना चाहिए और टर्टल नेक टॉप के साथ आप एक हाई बन बना सकते हैं या फिर एक हाई पोनीटेल बना सकते हैं और लो बन भी बना सकते हैं, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लुक बन के आता है। और हाई टर्टल नेक के साथ साथ आप राउंड इयररिंग भी डाल सकते हैं। एंड अगर आपने कभी भी

0: में आप अपने बालों को खुले रख सकते हैं, स्ट्रेट हेयर या फिर लो बन भी आप बना सकते हैं, और आपका इयररिंग बहुत ही छोटा होना चाहिए एंड इट शुड बी ऑलमोस्ट इनविजिबल और इट शुड गिव अ वेरी फॉर्मल लुक। और अगर आपने कभी भी स्लीवलेस टॉप डाला है या फिर कोई भी ब्लैक आउटफिट, इससे आपका हेयर स्टाइल थोड़ा कर्वी होना चाहिए, वेवी होना चाहिए, या फिर अगर आप अपने बाल को आधा खुला आधा बांधना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आजकल तो हाई बन का ट्रेंड चल रहा है हाफ खुले बालों के साथ, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और उसमें अगर आप लॉन्ग इयररिंग डालना चाहते हैं कोई पर्ल वाला, तो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर कभी भी आपको एक स्टेटमेंट स्टाइल चाहिए तो आप स्लीक पोनी टेल भी बना सकते हैं, स्लीक पोनी टेल का ट्रेंड भी चल रहा है आजकल, या फिर स्लीक बैक, इट्स वेरी वेरी ट्रेंडी आजकल। हाई बन की तरह आप लो बन भी बना सकते हैं, और कभी भी आप अगर आपने कोई वाइट वाला आउटफिट पहना है तो ऐसे में आप अपने बालों को खुले रख सकते हैं, या फिर मिडल वाला बन भी आप बना सकते हैं। इट गिव्स अ वेरी वॉल्यूमिनस हेयर और आपका जो हेयर डू है वो बहुत ही अच्छा और अमेजिंग आता है। सो डेफिनेटली कभी भी आप कहीं पर जा रहे हैं, इस पर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आजकल सब कुछ इतना डिटेल्ड हो चुका है फैशन के बारे में कि कोई निकलता है तो यही देखता है कि मेरी इयररिंग्स मैचिंग है या फिर वो मेरे फेस के साथ कॉम्प्लीमेंट दे रहा कर रहा है या नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इट मेक्स अ डिफरेंस। सो एज फ्रॉम नाउ कभी भी आपको बाहर जाना है, सो डू नॉट फॉरगेट, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका हेयर स्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से आपका इयररिंग उससे मैच हो रहा है या फिर इज इट कॉम्प्लीमेंटिंग योर हेयर स्टाइल एंड योर आउटफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Music, Tuck Tuck Tuck.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर। हैप्पी सैटरडे, टेक टाइम टू एंजॉय द लिटिल थिंग्स टुडे, दे ऑफन बिकम द बेस्ट मेमोरीज। थैंक यू सो मच जीना जी, आपने हमें ये बहुत ही प्यार से भेजा है और क्या सही बात कही है आपने, हर एक गुजरा हुआ पल खूबसूरत याद बन जाती है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से स्पेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनाब है फ्लैग से साथ देने के लिए शुक्रिया, आपको भी। नेक्स्ट गाना आपकी बेटी रीमा के लिए, जनीता, श्रेष्ठांशिनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, सुसरण फैमिली ऑफ फ्लैग और विश्वास जी। नेक्स्ट गाना गोज आउट आपके पति दिवेश के लिए, आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है। मेनी मेनी बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू विश्वानी जी, आपको भी और आपके पति देव दिवेश को भी। 33 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस, ऐसे ही आप लोग साथ मिलकर रहे, एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनकर रहे। एंड चलिए यहां पर ऑल्सो नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर बदवक विदेशी जी, कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती राइट नाउ। सो चलिए यहां पर किसी और का मैसेज आया है। प्रणाम बेटी, होप यू आर डूइंग वेल, अ वंडरफुल शो। एंड आपका मैसेज यहाँ पर थोड़ा अधूरा आया है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही प्यार से हमें बेटी कहा, हमें बहुत ही अच्छा लगा। एंड नाम तो आपका नहीं पता क्योंकि शायद आपका नाम नहीं आ पाया बिकॉज मैसेज इनकम्प्लीट है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर जो हमें लेकर जाएगा 6 बजे के समाचार बुलेटिन की ओर। एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात ऑन द वेव्स ऑफ RM2 टिल 7 PM।
0: म्यूजिक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मॉरिशस के स्कूल पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी, नए विषयों और लोअर सेकेंडरी में ज्यादा विकल्पों पर विचार। पढ़ाई और कामकाज में एआई का बढ़ता प्रभाव, युवाओं को आने वाले बदलावों के लिए तैयार करने पर जोर। मॉरिशस और चीन के बीच स्वास्थ्य समझौता, स्ट्रोक के शिकार मरीजों के इलाज के लिए एंजियोग्राफी मशीन का दान। विदेश में धरती के बढ़ते तापमान का असर, सूखे से डैनूब का जलस्तर ऐतिहासिक रूप से नीचे, यातायात और पर्यटन प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। मॉरिशस के स्कूली पाठ्यक्रम में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए विषयों, लोअर सेकेंडरी में अधिक विकल्पों और तकनीकी धाराओं के विकास पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। मिड ईयर रिव्यू के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय, मॉरिशस एग्जामिनेशन सिंडिकेट और कैम्ब्रिज के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई एक रणनीतिक बैठक में इन विचारों पर चर्चा की गई। इसका उद्देश्य

0: छात्रों और देश की भविष्य की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को बेहतर ढंग से ढालना है। जरा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: मॉरिशस में मीडिया रिव्यू मीटिंग के लिए आए कैम्ब्रिज के प्रतिनिधियों ने शिक्षा क्षेत्र के साझेदारों से मुलाकात की। इस दौरे से अब तक किए गए काम की समीक्षा करने में मदद मिली। यहां पोर्ट लुई के रॉयल कॉलेज में कैम्ब्रिज के डायरेक्टर ऑफ एक्रेडिटेशन ने मिनिस्ट्री पार्टनरशिप्स के प्रमुख के साथ अपनी पढ़ाई के बाद के मार्गदर्शन पर अभिभावकों और छात्रों से चर्चा की। मॉरिशस की ये यात्रा स्कूली पाठ्यक्रम के विकास में अगले चरणों पर चर्चा करने का अवसर भी है। इस प्रकार नए विषयों को शामिल किया जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय के चीफ टेक्निकल ऑफिसर रिको उबर बताते हैं,
2: les compétences qui le monde d'aujourd'hui et le monde de demain pour besoin et qu'il est là nous capable forme nos mêmes enfants vers la compréhension de du monde, la compréhension de l'entrepreneurship.
1: आज और कल की दुनिया को जो प्रतिभा चाहिए उसी के आधार पर हम अपने छात्रों को तैयार कर रहे हैं, जैसे ठेकेदारी, समुद्र आदि के क्षेत्रों में, और किस तरह अप्लाइड लर्निंग को भी अमल में ला सकते हैं। इसका उद्देश्य लोअर सेकेंडरी से ही विकल्पों का दायरा बढ़ाना और छात्रों को अधिक विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान करना भी है। एससी और एचएससी स्तर पर तकनीकी धाराओं पर भी विचार किया जा रहा है। कैम्ब्रिज के साथ इस काम से कुछ विषयों को आधिकारिक मान्यता मिलने की भी उम्मीद है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ मिनिस्ट्री पार्टनरशिप्स वालिद बगादी ने कहा, अगले चरण के लिए हम शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान करना। सरकार को पहले अपनी आर्थिक रणनीति के मद्देनजर अपनी प्राथमिकताओं की परिभाषा देनी
3: होगी। Of its industrial strategy, its economy, how it intends to create pathways for those candidates, and so once that is determined, Cambridge will provide the necessary support.
4: À partir du moment où tout le monde travaille avec Cambridge, met en place que Cambridge dans SC Technical, dans l'agriculture, et les fins tombent d'accord pour le créole, quand les fins finis examinent ce qu'on appelle the assessment materials. Et ce qu'on appelle the assessment framework pour nous capables gagner la reconnaissance officielle de Cambridge pour que ça mène ces là une officiellement des matières d'examen.
1: इसलिए मॉरिशस की स्कूली शिक्षा प्रणाली में इन बदलावों को शामिल किए जाने से पहले चर्चाएं जारी रहेंगी।
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI धीरे धीरे पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और कामकाजी दुनिया का अहम हिस्सा बन रही है। आज शनिवार 8 अगस्त को मोंटाई ब्लांश स्थित पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस में आयोजित यूथ कन्वेंशन में युवाओं से इस टेक्निक से मिलने वाले अवसरों को बेहतर ढंग से समझने और आने वाले बदलावों के लिए खुद को तैयार करने की अपील की गई। ये पूर्वी क्षेत्र में पहली बार आयोजित किया गया ऐसा कार्यक्रम है।
5: एक ऐसा आईना जो अब सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता बल्कि जानकारियां भी दे सकता है। इस तकनीक को शामिल करना AI के इस्तेमाल से संभव हुआ है। योगेश देव जी कहते हैं,
6: Slightly, vous trouvez les objets ou les températures qui peuvent faire dans différentes régions avec aucun ou agenda aussi.
5: स्लाइड करने पर ये समय अलग अलग इलाकों के तापमान और एजेंडा भी बता सकता है। हम कोडिंग सीखना शुरू कर रहे हैं। हम वाइब कोडिंग इस्तेमाल करते हैं, AI की मदद से प्रोग्रामिंग करते हैं। वैभव कहते हैं, AI हमें ऐसी जानकारियां दे सकती हैं जो हम नहीं जानते, रिविजन में भी मदद करती हैं।
6: फॉर एग्जांपल डिमांड इंफॉर्मेशन को न्यू पा कोने टू ले जूल का दे न्यू फॉर एग्जांपल डिमांड रिविजन।
5: पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, खासकर पढ़ाई और कुछ परियोजनाएं तैयार करने में। तलाईवेन बताते हैं, अगर अध्यापक ने जो कहा हम समझ नहीं सके तब AI से पूछ सकते हैं, पर हम हमेशा इस पर निर्भर नहीं रह सकते। शबनम कहती है, ग्राफिक डिजाइन कर रही हूँ, छोटी छोटी चीजें AI से पैदा कर
7: सकती
8: हूँ।
5: दिलान बताते हैं, दुनिया भर में AI बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ कानून होने चाहिए। जैसे जैसे AI अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जगह बना रही है, एक सवाल उठता है, इस पीढ़ी को काम की दुनिया में आने वाले बदलावों के लिए कैसे तैयार

0: यात्रा। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुकों बताते हैं, विश्वविद्यालयों में एआई पर कोर्स देना अनिवार्य हो गया है। इस साल सभी करिकुलम्स पर फिर से गौर कर रहे हैं, अगले साल से इसमें एआई भी शामिल करेंगे। मालिक वर्ग से भी छात्रों को एआई का प्रशिक्षण देने की मांग करती हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए नियमों को और सख्त किया जाएगा। आईसीटी मंत्री अविनाश रामतोहल कहते हैं, नौजवानों को एआई का प्रयोग करना आना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई में सहयोग के लिए।
1: Il est très important qu'ils nous mettent bonne garde fou dans le système, sinon on est capable d'un petit peu difficile pour capable amener les autres genre de modération dans le futur.
0: प्रदर्शन से लेकर अपने भविष्य पर विचार करने तक ये युवा पहले से ही तेजी से हो रहे बदलावों का सामना कर रहे हैं। अब चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से समझना और इसका इस्तेमाल करना सीखना।
2: चीन और मॉरिशस के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को लेकर आज दोपहर एबेन में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन और स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के बीच हुआ है। समझौते के तहत मॉरिशस को डिजिटल सब्सक्रिप्शन एंजियोग्राफी मशीन दान में दी जाएगी। इस उपकरण की मदद से स्ट्रोक यानी हार्ट अटैक से पीड़ित मरीजों पर ऐसे उपचार किए जा सकेंगे जो उनकी जान बचाने में अहम हो सकते हैं।
3: मॉरिशस में हर साल स्ट्रोक के 4,000 से अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। इनमें से एक तिहाई मरीज बच नहीं पाते हैं, जबकि अन्य को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जिनमें आंशिक या पूर्ण पक्षाघात यानी पैरालिसिस शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र को स्ट्रोक के पीड़ितों का बेहतर इलाज करने में सक्षम बनाने के लिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता मुख्य रूप से डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन दान करने के साथ साथ मॉरिशस के डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने से संबंधित है। डॉक्टर अश्वमेध दीना सिंह बताते हैं, जब सर से खून बहने लगता है तो उसे रोक देना चाहिए, वरना ये जम सकता है। इसलिए हमें एक ऐसा उपकरण दिया जा रहा है जो एक अंजो की तरह होता है, जो उस आर्टरी तक जाता है और तुरंत खून को बहने से रोक देता है। चीनी और मॉरिशस पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौते में न्यूरोसर्जरी, ऑन्कोलॉजी और ऑफ्टाल्मोलॉजी के जाने माने विशेषज्ञों के मॉरिशस आने का भी प्रावधान है। डॉक्टर हुआंग शिफांग ने कहा, चीनी पक्ष डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि एक ऐसी पेशेवर टीम तैयार की जा सके जो स्वतंत्र रूप से न्यूरो इंटरवेंशनल प्रक्रियाएं करने में सक्षम हो। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्चू ने कहा, हमें एक टेक्निकल इंजीनियर भेजा जा रहा है जो टेली सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि बेहतर संचार हो। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मॉरिशस में राजदूत डॉक्टर हुआंग शिफांग चीनी डॉक्टरों के जल्द ही मॉरिशस आने के लिए बहुत जल्द बीजिंग की यात्रा करेंगी, जो कुछ ही हफ्तों में होने वाली है।
2: इस्कन इस साल दो महत्वपूर्ण अवसर मना रहा है, अपनी स्थापना के 60 साल और इसके संस्थापक भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा, जिन्हें शीला प्रभुपदा के नाम से भी जाना जाता है, कि मॉरिशस की ऐतिहासिक यात्रा के 50 साल। उनकी ये यात्रा इस्कन के इतिहास में आज भी विशेष स्थान रखती है और उनकी विरासत आज भी आगे बढ़ रही है। आज इबन में प्रेस से मुलाकात करते हुए पॉल बेरांजे ने विपक्ष नेता के रूप में चेतन बाबूलाल की नियुक्ति पर टिप्पणी की और इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुसार ये निर्णय गणराज्य के राष्ट्रपति का होता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जोना बेरांजे को विपक्ष की विप के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। फ्रो मिलिटेंट प्रोग्रेसिस के नेता ने संस्थागत संवाद पर आधारित शासन करने के एक नए तरीके की इच्छा जताई है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
0: पॉल बेरांजे ने चेतन बाबूलाल की विपक्ष नेता के पद पर नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी।
4: Nous fin écrire au président de la République. Nous fin écrire une lettre signée par nous trois. Pour éclaircir les choses et non pas pour demander quoi que ce soit. Le président exerce sa liberté totale sous la Constitution. Qui fait nous écrire? Parce que nous voulons bien mettre la Constitution, dire si le président trouvait qu'il y a un nouveau parti qui est dans la majorité.

0: C'est l'immédiat, même pas obligé, l'incapable sans le leader de l'opposition. Loupé propose l'honorable Jean-Alain Béranger comme whip de l'opposition.
1: Paul Béranger ne Véronique Legovin que junior ministre qui pad se istifé ko lekar patrakaron ke sawalon ka bhi jawab diya. Unhone kaha ki ve jaanch puri hone ka intezar karenge. Paul Béranger ka manna hai ki hal ke ghatnakramon khaskar pension se jude mamlon ko dekhte hue shasan chalane ke tareeke mein badlav zaruri hai. Unhone anya sujhavon ke sath fiscal responsibility act aur ek independent fiscal commission banane ka bhi prastav rakha hai.
2: राजपोत स्थित सेंट्रल बिल्डिंग में एमएसएम ने भी एक प्रेस सम्मेलन लगाया जो लोजोंगा ने राजनीतिक घटनाक्रम पर टिप्पणी की जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की फ्लाक में हुई हालिया जुटाव संसद में फाइनेंस बिल का पारित होना नए विपक्ष नेता की नियुक्ति और वेरोनिक लेगोविन का इस्तीफा शामिल था.
3: जो लोजोंगा ने विपक्ष के नेता के पद से अपने इस्तीफे पर बात की. जो लोजोंगा का दावा है कि एमएसएम पेंशन योजना में संशोधन करेगा उनके अनुसार मौजूदा प्रणाली मैनुअल वर्कर्स के प्रति अन्यायपूर्ण है. एमएसएम छोटे और मध्यम उद्योगों पर लगाए जाने वाले वैट की सीमा की भी समीक्षा करने का वादा करता है. एमएसएम ने ड्रग्स से जुड़े एक मामले में पूछताछ के दायरे में आई सांसद वेरोनिक लेगोविन के खिलाफ फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन से जांच शुरू करने की मांग की है. एमएसएम सिंथेटिक ड्रग्स से संबंधित एक नई नीति की भी वकालत करता है. जो लोजोंगा ने हाल ही में कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को बधाई दी है और टूर डी फ्रांस में किम्बर्ली लेकुपियनो के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की है.
2: झरने प्रकृति की खूबसूरती का अनमोल नज़ारा और छुट्टियों में सैर सपाटे का पसंदीदा ठिकाना और वाटरफॉल भी ऐसी ही एक जगह है. मिनी सी वाटरफॉल भी एक ऐसी जगह है जहां बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं लेकिन इसकी खूबसूरती के साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं. पिछले 8 सालों में मॉरिशस के विभिन्न झरनों में डूबने से 13 लोगों की जान जा चुकी है. ऐसे में स्कूल की छुट्टियों के दौरान बचाव दल और हाइकिंग विशेषज्ञ लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं. विदेश में धरती के बढ़ते तापमान का सीधा असर अब साफ दिखाई दे रहा है. रिकॉर्ड तापमान और कई महीनों तक बारिश नहीं होने के कारण डैन्यूब नदी के कुछ हिस्सों में पानी का स्तर ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है. सूखे की वजह से कई क्रूज जहाजों की आवाजाही रुक गई है. माल ढुलाई धीमी हो गई है और मध्य यूरोप के कई देशों में पर्यटन पर भी गंभीर असर पड़ा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से खोलने को लेकर बातचीत जारी है. ये मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. वाशिंगटन का कहना है कि उसे उम्मीद है कि ईरान और ओमान के बीच जल्द ही एक समझौता हो सकता है लेकिन तेहरान ने आज कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को दोबारा खोलने का फैसला मुख्य रूप से ईरान की शर्तों को स्वीकार किए जाने पर निर्भर करेगा इसलिए स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है. और कोंगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है. देश में अब तक 4,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और करीब 1,850 लोगों की मौत हुई है. सबसे ज़्यादा मामले इचूरी प्रांत में है लेकिन बीमारी 4 अन्य प्रांतों तक भी फैल चुकी है. इस बार इबोला का दुर्लभ प्रकार सामने आया है जिसके लिए पहले इस्तेमाल होने वाले टीके और खास इलाज उपलब्ध नहीं है. प्रभावित इलाकों में संघर्ष और सुरक्षा की समस्या के कारण बीमारी को रोकने का काम भी मुश्किल हो रहा है. देशी देशी खबरों के बारे में मौसम का हाल सुनते हैं.
3: आज रात के दौरान पूर्व से पाए जा रहे अस्थिर बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा. अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी. कभी कभार सामान्य वर्षा होगी. ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तटवर्तीय इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. कल दोपहर बाद आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होगी. अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री

सेशस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह से दक्षिण पश्चिम के समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, इसीलिए कल सुबह से पश्चिमी और दक्षिणी लगुनों में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:35 पर और शाम 5:54 पर सूरज ढल जाएगा।

मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए से आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक और कोविला का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: वेजी रोड गुडलैंड्स में, वेजी रोड गुडलैंड्स में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराज टकोरी, श्री जयराज टकोरी जो रमेश नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर वेजी रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। लातूर रोड रोश्टेमी 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री गोहाना चिमादू की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विमला चिमादू के घर लातूर रोड रोश्टिया से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 10 AM। भीम जोगी स्ट्रीट अत्या रोशमी 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेशमी जोगी शुक्लोल पैदाइशी नाम सुकलोल और जो रेशमी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री विकास जोगी के घर भीम जोगी स्ट्रीट त्यागोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामवशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। सिर गुलाम लेन नोवेल फ्रांस में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मी डोलोरी जो किशोर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर से गुलाम ले नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए नोवेल फ्रांस की रामजेन लेन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। रुई मगाजन विलनुआ मेबर्ग में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री नौबत सिंह सियापत जो राजेश नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी सोमवार 10 अगस्त को दिन के 10 बजे उनके घर रुमागाजा विलनुआ मेबर्ग से उठाकर दफनाने के लिए तोम्बो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल ऑन मंडे 10 अगस्त एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: म्यूजिक
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: वेल वेल अगर आप सोच रहे हैं कि ये हम आ गए हैं कहां चलते चलते तो आपको आपको बस प्यार की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं 6:27 हो चुके हैं दिव्या का साथ वंस अगेन ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। चलिए ये गाना जो है जिस जो सिचुएशन यहाँ पर हमने क्रिएट किया है कभी कभी इसको सोच के हमें बहुत ही हंसी आती है। जैसे हमने गाना चलाया आप लोगों के लिए ये हम आ गए हैं कहाँ, कुछ लोग कभी ऐसा होता है ना कि आप काम पर नहीं जाते हैं और आपको एक इतनी अच्छी नींद आ जाती है जब आपकी आंख खुलती है तो आप इतने डर जाते हैं कि सुबह है शाम है क्या वक्त है। कभी कभी आपको ये भी लगता है कि शायद आप स्कूल जाते हैं और आपने स्कूल बस मिस कर दिया हो, बहुत कुछ आपके दिमाग में चलने लग जाता है और ऐसे में ये गाना बहुत ही परफेक्टली फिट होता है ये हम आ गए हैं कहाँ। चलिए ऐसा भी होता है लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे सिचुएशन के साथ आपका सामना ताकि आपको भी पता चले कि भाई चलो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। फॉर एग्जांपल जब आप उठते हैं डर के साथ और आपको एहसास होता है कि नहीं भाई कुछ नहीं है, मैं तो घर के अंदर हूं और बिल्कुल काम पे नहीं जाना है और कल भी छुट्टी है, तो ये एहसास कितना खूबसूरत होता है ना। एंड इट्स द बेस्ट फीलिंग नोइंग दैट कल के लिए अलार्म नहीं डालना है, कल तो संडे है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी है और कुछ लोगों का काम भी है, लेकिन क्या करें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और मेहनत का फल तो बहुत ही मीठा होता है। एंड आप बस मेहनत से काम करते जाइए। टू ऑल दोज ऑलरेडी एट वर्क राइट नाउ आपको बोन कुहाश।
1: म्यूजिक
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: Hey yo, Soundboy, run that beat, blood.

0: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: वो लड़की जिसे अब ढूंढ रही हैं वो यही पर हैं और हम तो आपको बबाई कहेंगे 7 बजे और अभी के लिए तो कुछ बचे कुछ मिनट हैं हमारी और आपके दरमियाँ तो चलिए विल ट्राई टू मेक इच एंड एवरी मोमेंट मेमोरेबल. हाई आई एम इन द किचन कुकिंग एंड लिसनिंग टू यू. ये आपने हमें 1759 को भेजा था एंड आई गेस मे बी यू आर स्टिल कुकिंग और मे बी यू हैविंग योर डिनर. तो आपको बोंको आज इन द किचन या फिर आपको बना पीछी एंड यू लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू योर हस्बैंड आकाश. आपका छोटा विहान है, आपकी मामा है श्रद्धा एंड योर पापा बिरज. दिस वन इज़ फॉर द पीपल हु मीन द वर्ल्ड टू मी एंड आपका बहुत ही छोटा सा इनर सर्कल है बट बहुत ही प्यारा सा इनर सर्कल है और सब लोगों की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए. फ्यू पीपल बट जेन्युइन पीपल. चलिए यहाँ पर आपका भी मैसेज आया है. हेलो ऑल रेडियो मस्ती टीम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक. शिनाज जो कि आप हैं रिविया झोंपा से, डेडिकेटिंग अ बर्थडे सॉन्ग फॉर माई बेटा रोहन जोगी और आप के रोहन को हम बहुत ही प्यार से विश करेंगे वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. एंड टू ऑल दोज जो आज अपना स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको मिनी मिनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.
0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Music Doctor Cutter.
1: RM2 Radio Musti.
2: Already 6:52 and इसी गाने के साथ it's a time for me to say goodbye to all of you and जाते जाते बाजीगर के लिए अगला गाना क्या बात है

और ये बाजीगर सीधा स्विट्जरलैंड से निकल के आया है. थैंक यू सो मच बाजीगर जी, यानी कि अंतिश, हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए, टू ऑल दोस्त जिन्होंने बहुत ही प्यार से हमारा साथ दिया 4 बजे से लेकर अभी तक, थैंक यू सो मच. एंड चलिए इसी के साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय. विकास ऑल सेट है आपको एंटरटेन करने के लिए. हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: ऐसा समा हम लाएंगे आपके लिए और एमटी रेडियो मस्ती पर रात के 7:35 हुए हैं और यानी 729 एवरी सैटरडे नाइट हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात झंकार बीट्स जिसमें मैदान का रोमांच और संगीत की मस्ती होती है। मैं हूं विकास रामधनी और आपके साथ हूं रात के 9 तक। हर धड़कन में जोश, हर सुर में जुनून। महिला टू डे फ्रांस साइकिलिंग प्रतियोगिता का आज पूर्वांतिम पेनल्टीमेट स्टेज है और किमले कू दे पिना 10वें स्थान पे अब तक है जनरल क्लासिफिकेशन में। टॉप प्लेस्ड केसिया फिने से 6:17 दूर 171.9 किलोमीटर का सबसे लंबा रास्ता है आज और रेस भी सबसे लंबी रेस मानी जा रही है। सो सपना देखना मना नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। इस रेस में बहुत कुछ हो सकता है। एंड फुटबॉल में कमाल का स्कोर, अभी अभी मैच शुरू हुआ बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड पेरिस सेंट जर्मेन और 2 मिनट के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज कंसीडर्ड ए गोल। सो इट्स पेरिस 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड 2। इब्राहिमा एम्बाय ऑन टारगेट खेल के 2 मिनट पर। ये यूनाइटेड का एक फ्रेंडली मैच है पर दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा और मैच मैच ही है और अभी 1-0 से पेरिस सेंट जर्मेन लीड कर रही है। इससे पहले आज ही लगभग दिन के 3-4 बजे चेल्सी फुटबॉल क्लब ने एसी मिलान को फोड़ डाला 3-0 से। उनका विश्वास कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ गया है। तो इसी समय धमाकेदार मुकाबला बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड पेरिस सेंट जर्मेन, 5वां मिनट है, 1-0 से लीडिंग पेरिस सेंट जर्मेन। और लिवरपूल कल खेलेगा आईएस मोनाको के खिलाफ कल शाम 5:30 बजे। आज कई और फ्रेंडली मुकाबले रखे गए हैं और साइकिलिंग में, क्रिकेट में, टेनिस में भी बहुत सारे मैच है और ट्रांसफर बाजार भी फटने लगा है। इन सब पर बात करेंगे ऑन 5499-1294-549912-94 पे अपना मैसेज भेज सकते हैं।

0: सारी तमन्नाएं पूरी नहीं होती है।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Musti.
0: प्रजोश हो और होश हो तो तमन्ना भाटिया हो या तमन्ना वो पूरी हो सकती है। 7 चैंपियंस लीग फाइनल स्टार्टर्स अवेलेबल फॉर पेरिस सेंट जर्मेन, उनके तमन्ना थी ये मैच जीतने की। अभी मैच शुरू हुआ है, खेल का ये 20वां मिनट है। पेरिस सेंट जर्मेन लीडिंग बाय 1-0 और इसमें पेरिस अभी इसी बुधवार को, आज से 3-4 दिन बाद बुधवार की रात सुपर कप का फाइनल खेलेगा। सुपर कप में खेले गए अगेंस्ट एस्टन विला। सो पेरिस अपने सभी अवेलेबल उपलब्ध खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है एंड दे हैव टू प्ले, लेकिन कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो आज नहीं है मैदान पे। द लाइक्स ऑफ कौन नहीं है मैदान पे, सो ब्रैडली बाकुला नहीं है। लिवरपूल टारगेट ब्रैडली बाकुला अभी तक छुट्टियों पे हैं और इंतज़ार में है कि कब उसके लिए बुलावा आए लिवरपूल की ओर से। साथ में और उस्मान देम्बेले भी नहीं खेल रहा है। मैग्नस एक्लिश नया खिलाड़ी, 42 मिलियन पाउंड का नया खिलाड़ी, वो भी नहीं है। लेकिन क्विचा कागज से लिया इज प्लेइंग, क्योंकि उनका देश वर्ल्ड कप है, जॉर्जिया वर्ल्ड कप में नहीं था। सो पेरिस टेकिंग ऑन एस्टन विला इन द यूरोपियन सुपर कप ऑन वेंसडे, इसलिए सभी खिलाड़ियों को टेस्ट किया जा रहा है। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओर से वी हैव ए क्वाइट ए फुल टीम, हीटन एज गोलकीपर, मजराउई, हेवन, हैरी मैग्वायर, ल्यूक शो, सैंटोस, मेसन माउंट, अमाजियालो, लेसी, फिर साथ में डोगू, एम्बेमो अभी मैदान पे हैं और सब्स्टिट्यूट के रूप में जोगुडालो, ब्रूनो फर्नांडेज, ज़र्क्ज़ी, खबर यह है कि ज़र्क्ज़ी को इटली भेजा जा रहा है लोन पर, यूरो, चेलमांस, फ्लेचर, दो फ्लेचर हैं और आमास के साथ आ में भी सब भी सब्स्टिट्यूट के रूप में बेंच पे बैठे हुए हैं। और पेरिस की ओर से वी हैव साफोनोव, पाचो,

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunka Beats.
2: RM2, Radio Musty.
3: मैनचेस्टर यूनाइटेड भी आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा है. स्टिल 104 पेरिस सेंट जर्मेन खेल का ये 30वां मिनट है. गोल कर्टिसी ऑफ इब्राहिमा एम्बाय खेल के दूसरे मिनट पर ही. एंड बाकी मैचों में इट्स ए फुल टाइम रिजल्ट फॉर टोटेनम हॉटस्पर 1 रेटाफे 1. टोटेनम ने आज अपना मैच ड्रॉ किया. कोनो गलागे ऑन टारगेट फॉर टोटेनम खेल के 70वें मिनट पर. इससे पहले 66-66 मिनट पर अल्बर्टो रिस्को फॉर गेटाफे. सो मैच ड्रो रहा 1-1. एंड ब्राइटन इस समय ब्राइटन एकदम ब्राइटली एएस रोमा को 3-0 से हरा रही है. खेल का ये 64वां मिनट है. ओनली 64 मिनट बीइंग प्लेड. रूटर के बाद अयारी का एक डबल फॉर ब्राइटन एंड होव एल्बियन. और इससे पहले चेल्सी फुटबॉल क्लब ने आज शाम लगभग 4 बजे एसी मिलान को 3-0 से परास्त किया. रोआ पेड्रो का एक डबल. मोसेस काइसेडो आल्सो ऑन टारगेट. चेल्सी 3 एसी मिलान 0. और बता दें कि चेल्सी कल अपना एक और मैच खेलने वाला है मलेशियन एक टीम के विरुद्ध. सो चेल्सी का ये आखिरी फ्रेंडली मैच होगा. 2 का आखिरी मैच होगा. आज उसकी जीत हुई 3-0 से. एंड यूवेंटुस की हार हुई. यूवेंटुस 1 इंटर मिलान 2. एंड ऑल इटालियन मुकाबला. इंटर मिलान के लिए डिमार्को एंड जियो फॉन टारगेट. फ्रांसिस्को कोंसेसाओ फॉर यूवेंटुस. इतना सब कुछ फ्रेंडली मैचों को लेकर. इसी समय कई और मैच खेले जा रहे हैं. रात के 9 बजे इज इट 9 बजे हाँ रियल मैड्रिड एवे जाएगी फिर एनवारोस के मैदान पे. देन ट्रैबज़ोंस्पोर मोहम्मद सलाह का नया क्लब ट्रैबज़ोंस्पोर खेलेगा गुडस्टेपे के विरुद्ध. गलातासराय वर्सेस विलारियल. और कुछ मैचों में डू वी हैव रेसिंग क्लब दिलांस वर्सेस संडरलैंड. और आई थिंक आज

0: आर्सेनल भी आज खेलने वाला है. लेट मी चेक, आर्सेनल का आज मुकाबला होने वाला था, सो आर्सेनल भी खेलेगा और आर्सेनल में ब्रूनो गिमारेस आ गया है. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती और एम टू, हिम्मत दिल में, जुनून आंखों में, जीत का सपना हर सांस में. जीतने वाले बहाने नहीं बनाते, वे इतिहास रचते हैं.
1: झलकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती.
1: झलकार बीट्स,
0: दिल का हाल सुनते रहिए और अपना टेक्स्ट भेजते रहिए 5499 1294 5499 1294 पे.

0: इस 12 से 16 अगस्त SBICC 5 सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इंटरनेशनल होम शॉपिंग फूड फेस्टिवल फैशन शो मैजिक शो और धमाकेदार एंटरटेनमेंट सब कुछ एक ही छत के नीचे उत्सव 12 टू 16 अगस्त SBICC 5 मिस मत करना ऑर्गेनाइज्ड बाय इवेंट वर्क्स मैनेज्ड बाय राजस्थान वर्क्स लिमिटेड
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: Jhankar Beats
1: RM2 Radio Musti
2: Jhankar Beats

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: जैसे ही बंदूक कहा तैसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टारगेट ब्रायन एम्बेमो का ये गोल खेल के 32वें मिनट पर एंड इट्स पेरिस सेंट जर्मेन 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड 1 खेल का ये 42वें मिनट है एंड नियरिंग फर्स्ट हाफ की समाप्ति की ओर मैच बढ़ रहा है और हैपनिंग ये मैच खेला जा रहा है बिटवीन पेरिस सेंट जर्मेन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. यदि यूनाइटेड के लिए एक दो और मैच बचे हुए अभी तो पेरिस सेंट जर्मेन इसी बुधवार को खेलेगा यूरोपियन सुपर कप में

अगेंस्ट एस्टन विला जो यूरोपा लीग विनर है और पाकिस्तान जैमे चैंपियंस लीग का विनर, सो उसकी तैयारी में आज ये मैच हो रहा है और पाकिस्तान के लिए कई सारे खिलाड़ी अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक वर्ल्ड कप की छुट्टी पे हैं, सो और मैनचेस्टर यूनाइटेड डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट। 5499-1294-549-9124 पे आप टैक्स भेजते रहिए। सो ब्रूनो गिमारेस हम बता रहे थे कि ट्रांसफर बाजार में एकदम से खुल गया है और ब्रूनो गिमारेस

सबको सरप्राइज करते हुए आज सुबह हमने बताया था हमने हमारे स्पोर्ट्स न्यूज में रोनाल अगोगो जो यूरोगवे का डिफेंडर है 27 ईयर ओल्ड का है एफसी बार्सिलोना के लिए साल 2018 से खेलता आ रहा है वो कैन वी से अनवांटेड हो गया था क्योंकि पिछले सीजन केवल वो 11 मैच खेल पाया दो जो डिफेंडर्स है उनकी जगह पर खेलने लगे हैं बार्सिलोना के लिए सो वो लोन पर लिवरपूल में आ गया है कह सकते हैं मेडिकल पूरा करने के लिए वो निकल पड़ा है एफसी बार्सिलोना से और कल बताया जा रहा है कि कल संडे को वो अपना मेडिकल पूरा करके हस्ताक्षर भी करने वाला है लोन पर आ रहा है एक साल के लिए विद एन ऑप्शन टू बाय ऐसी खबर है कि 55 मिलियन पाउंड 55 मिलियन पाउंड पर ये डील संपन्न हुआ है एंड इज गुड फॉर लिवरपूल ही इज ए गुड फिट क्योंकि वर्जिल वैन डाइक को चाहिए था एक सहारा एक हेल्प सपोर्ट एंड 27 ईयर ओल्ड में ही इज ए गुड प्लेयर लेकिन कुछ समय से वो घायल होता रहा है लेकिन देखना है अब क्या वो लिवरपूल के साथ क्या रंग लाता है क्या गोल खिलाता है रोनाल अरोरो वेलकम टू लिवरपूल और बस सुनते रहिए बाकी जो ट्रांसफर है बात करेंगे ऑन 5499 1294

0: RM2 Radio Musti.
1: So Paris Saint-Germain 1 Manchester United 1 ये हाफ टाइम रिजल्ट है अभी एक पूरा हाफ बचा हुआ है एंड ये गाना था खास तौर पे हमारे दोस्त विनोद के लिए ऑन हिज 23rd वेडिंग एनिवर्सरी भाभी को भी हार्दिक बधाई ग्रेट गोइंग ग्रेट केमिस्ट्री हालांकि विनोद कंप्यूटर में माहिर है सो भाभी हाना को भी हार्दिक बधाई खास तौर पे ये जो बधाइयां हैं जो विशेस हैं फ्रॉम वृत्ति वांशु एंड दिव्या की ओर से विशिंग यू बोथ ए Very happy wedding anniversary. कुछ खबरें अब स्पोर्ट्स वर्ल्ड से साइकिलिंग में अभी तक टू डे फ्रांस महिला टू डे फ्रांस का जो पूर्वांतिम चरण है अभी तक उस पर कोई खास खबर नहीं आई है आज 171.9 किलोमीटर का लंबा सबसे लंबी रेस मानी जा रही है अभी तक किम लेकू डे पिना जनरल क्लासिफिकेशन में 10वें स्थान पे है लेकिन आज कुछ भी हो सकता है इतना लंबा रास्ता जो है 171.9 किलोमीटर और फुटबॉल में कुछ फ्रेंडली मैचेस खेले जा रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड और पेरिस सेंट-जर्मेन के बीच मैच ड्रॉ चल रहा है 1-1 और कल शाम 5:30 बोलेगा नहीं कल 5:30 PM लिवरपूल वर्सेस आईएस मोनाको ये मैच एनफील्ड में खेला जाएगा और अंदोनी इराउला का भी ये पहला मैच होगा एनफील्ड में आज द न्यू हेड कोच ऑफ लिवरपूल कल लगभग सभी नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा और समय भी इतना बचा नहीं है क्योंकि 21 अगस्त से इंग्लिश प्रीमियर लीग का पहला सप्ताह आरंभ हो रहा है और इस बीच बता दें कि 16 अगस्त को द एफए कम्युनिटी शील्ड द कर्टिन रेजर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग शुरू हो रहा है खेला जाएगा बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी सिटी की बात हुई तो बता दें कि उसका सेकंड गोलकीपर जेम्स ट्राफोर्ड चला गया है लीड्स यूनाइटेड में 45 मिलियन यूरो में तो इस बीच सिटी ने एक नए गोलकीपर को सेकंड गोलकीपर को लाया है काफ़ी कम पैसों में उसको चाहिए एक सेकंड थर्ड गोलकीपर और ब्रैडले बाकोला जो सागा है ट्रांसफर सागा लगता है संपन्न नहीं होगा बिकॉज पेरिस सेंट-जर्मेन 150 मिलियन यूरो से अधिक मांग रहा है जबकि लिवरपूल उसके लिए 110-120 तक ही देने के लिए राजी हुआ है अभी तक नेगोशिएशन और डिस्कशन बाकी है इब्राहिमा एम्बाए भी आने वाला था लेकिन क्या होगा उसी ने आज गोल स्कोर किया अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल के दूसरे मिनट पर ही

रात कर बजकर 4 मिनट और 18 सेकंड इस समय हमारे दोस्त विक्की भोलू मेकअप कर रहा है, यानी कि काम पर है, नौकरी पर है, और आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। आपने ये गाना मांगा था अपने दोस्त अजय के लिए भी एंड पूरी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। हिम्मत दिल में, जुनून आंखों में, जीत का सपना हर सांस में।

0: इस बार जानकर ही बता रहे हैं, खबर एकदम पक्की है, समाचार पक्का है। द गोट लियोनेल मेसी का पापा चल बसा है। बुरी खबर है, बुरा समाचार है।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats. RM2, Radio Musti.
0: Heartbeat को झंकृत करने वाली खबर है, अभी अभी खबर आई है BBC Sports News पर, एंड इट्स कन्फर्म्ड इस बार, क्योंकि कुछ सप्ताह पहले वर्ल्ड कप के दौरान किसी पत्रकार ने ये खबर फैलाई थी कि मेसी के पापा का देहांत हो गया था, उस कारण उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उसको रिजाइन भी करना पड़ा था, लेकिन इस बार इट्स एट द एज ऑफ 68 फॉलोइंग ए लॉन्ग इलनेस मेसी के पापा जॉर्जी मेसी का देहांत आज सुबह एक अस्पताल में हुआ है। वो एक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। सो अलविदा जॉर्जी मेसी, जिन्होंने अपने बेटे का एजेंट बनकर उसको कई ऐसी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज, कप और जितने भी उसको हासिल हुआ है मेसी को, लियोनेल मेसी को, सब उसके पापा एजेंट के रूप में उसको प्रदान करने में सहयोग दिया है। सो लियोनेल मेसी खुद 39 ईयर ओल्ड का है, ही बिकेम एन 8 टाइम बालों डो विनर, और उसने 4 बार चैंपियंस लीग भी जीता है विद FC बार्सिलोना, प्लस 10 ला लीगा टाइटल इन 17 सीजन्स इन देयर फर्स्ट टीम, और पापा हमेशा उसके एजेंट रहे हैं, उसको सपोर्ट दिया है। अब एट द एज ऑफ 68 वे चल बसे हैं, एंड होता है, बस लियोनेल मेसी और उनके परिवार के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि फुटबॉल जगत की ओर से भी। सो ये भी खबर है, और खबर ये भी है कि इस समय पेरिस सेंट जर्मेन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच अभी तक मैच ड्रॉ चल रहा है। इट्स 1-4 पेरिस एंड 1-4 मैनचेस्टर यूनाइटेड। ब्रायन एम्बेमो का इक्वलाइजर फर्स्ट हाफ की समाप्ति से करीब, इससे पहले जो है

कोई नहीं ऐसा भी होता है अपने आप चला गया सो चलिए ये गाना आपके नाम 5499 1294 5499 1294 पे अपना मैसेज भेजते रहिए

हर उगते सूरज में तुम्हारी आवाज का मतवालापन है, हर ढलती हुई शाम में तुम्हारी दर्द भरी आवाज है। तुम रफी हो, तुम संगीत की दिशा हो।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: झंकार बीच एवरी सैटरडे 7 to 9 हर शनिवार की रात 7 to 9 के बीच हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात में हूँ विकास और वी हैव सम मोर न्यूज़ लोकल न्यूज़ में भी कुछ बातें हैं बात सबसे पहले करें आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा सीजन 4 की तो आज एक मैच खेला गया था जिसमें कंटिनेंटल चीताज की जीत हुई और उन्होंने वन हेल्फ जागुआ को 7 runs से परास्त किया एंड न्यू वन इज द प्लेयर ऑफ द मैच बता दी कि इसी आई

सी सीजन 4 में कल संडे को एक और मैच रखा गया। कल संडे की सुबह 9 बजे एएमजी पैंथर्स खेलेंगे एपीपी लेपर्ड्स के विरुद्ध। ये मैच कल खेला जाएगा और क्या कल या कल के लिए एसएसआर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में मापू में ये मैच खेला जाएगा। क्रिकेट के जो प्रेमी है वे वहाँ पर जाकर ये मैच इन मैचों का आनंद ले सकते हैं। और जहाँ तक फुटबॉल की बात है, क्षेत्र स्तर पर होशनुआ स्पोर्ट्स क्लब दुदला बी मासुविना कप के अंतर्गत आज जो मैच खेला गया उसमें रेड स्टार बुनाकेई ने रेनबो ग्रांबे को 2-1 से हराया। बता दें कि कल संडे को भी इसी टूर्नामेंट में एक और मैच खेला जाएगा बिटवीन स्पोर्टिंग बॉयज एस सी एंड एसोसिएशन होशनुआ। ये मैच वहीं के मैदान पर कल शाम 3:30 बजे खेला जाएगा। 5499-1294-5499-1294 पे आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। लोकल स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, पेटोंग हो, टेनिस हो या क्रिकेट हो, कुछ भी, कोई भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हो, आप हम तक ये खबरें पहुंचा सकते हैं। एंड वी हैव वन इंटरनेशनल न्यूज फ्रॉम द क्रिकेट वर्ल्ड। श्रीलंका ए वर्सेस इंडिया, कल तक श्रीलंका ने अपनी पारी पूरी कर ली थी इन 90 ओवर्स। ये 3 दिनों का एक टेस्ट मुकाबला है, एक ट्रायल कह सकते हैं बिफोर द रियल मैच। कल श्रीलंका ने 8 विकेट के नुकसान पर दे डिक्लेयर्ड ऑन 363 पर उन्होंने डिक्लेयर किया और जवाब के तौर पर आज केवल एक दिन के दौरान भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर 357 रन बना लिए हैं एट द क्लोज ऑफ टुडेज सेशन। सो इंडिया ट्रेल श्रीलंका ए बाय 6 रन्स विद 4 विकेट्स रिमेनिंग।

0: Tangar Beats.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to
2: Tangar Beats.
3: RM2, Radio Musti.
0: तेरे नाम की धड़क हर शनिवार की रात 7 से 9 के बीच झंगर बीच हमारे साथ एक प्यारी सी छोटी सी मुलाकात सो स्पोर्ट्स और म्यूजिक का अद्भुत संगम जो है मात्र RM2 रेडियो मस्ती पर एंड इट्स ए स्पेशल सेगमेंट मेंट फॉर दोज हु लव म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स की भाषा में और स्पोर्ट्स जो है आजकल अभी अगले 21 अगस्त से बता दें 21 अगस्त से इंग्लिश प्रीमियर लीग का नया सीजन आरंभ होने जा रहा है और 16 अगस्त को 16 अगस्त को FA Community Shield खेला जाएगा आज द कर्टिन रेजर प्रीमियर लीग बिटवीन आर्सेनल जो प्रीमियर लीग विनर है और FA कप का विनर मैनचेस्टर सिटी विद द न्यू कोच और बता दें कि इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच अभी तक मैच ड्रॉ चल रहा है और इसमें खेल का ये 76 मिनट बीइंग प्लेड एम्बेमो इक्वलाइज्ड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल के 32वें मिनट पर इससे पहले इब्राहिम एम्बाई ने खेल के 2रे मिनट पर ही पारी को आगे किया और इसमें योगी चेलमांस को पहला मैच खेलने का मौका मिला है एंड कैप्टन ब्रूनो फर्नांडेज भी अभी सेकंड हाफ में आया है जबकि मेसन माउंट फोर्स्ड ऑफ ऑन 20 मिनट्स विद इंजरी फिर से वो घायल हो गया बंदा अब देखना यह है कि कब वापस लौटेगा ए कमिटेड कॉन्फिडेंट राशफोर्ड रियली एड्स टू दिस स्क्वाड डाउन द लेफ्ट एंड अप टॉप यानी कि मार्कस राशफोर्ड भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में ही रहने वाला है एंड इट्स हैपनिंग बता दें कि EFL कप में भी आज वेस्ट हैम यूनाइटेड की जीत हुई बर्नली भी जीत पाया कोलचेस्टर वर्सेस द सिंस अबाउट टू किक ऑफ यहां पर भी लीग कप में भी कई मैच खेले जा रहे हैं और आज दिन के दौरान चेल्सी ने एसी मिलान को 3-0 से परास्त किया एंड टेनिस में भी आजकल कनाडा ओपन चल रहा है आज महिला वर्ग का लास्ट 16 राउंड शुरू हो रहा है इसमें कई नामी खिलाड़ी हैं जबकि पुरुष वर्ग में जो भी टॉप सीड खिलाड़ी हैं वे आउट हो गए या फिर वे इस टूर्नामेंट में थे ही नहीं सो ब्रिटेन का कैमरन न्यूरी वो आगे बढ़ गया है

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: आना ही पड़ा क्योंकि कुछ खबरें हैं, कुछ न्यूज़ है, कह सकते हैं गुड न्यूज़ फॉर मॉरिशन साइकिलिंग, क्योंकि अभी अभी आठवां चरण समाप्त हुआ है और किम लेकू डेपिना अभी इस आठवें चरण में 171.9 किलोमीटर के लंबे रास्ते में चौथे स्थान पर आई, फोर्थ पोजीशन. हैट्स ऑफ टू किम लेकू डेपिना, ग्रेट गोइंग. और कुल मिलाकर फिर भी जनरल रैंकिंग में वो एक पायदान ऊपर आ पाई, फ्रॉम 10th पोजीशन टू 9th पोजीशन. इट्स ए ग्रेट ग्रेट रिजल्ट फॉर किम लेकू डेपिना और खासतौर पे मॉरिशस के लिए, मॉरिशन साइकिलिंग के लिए. सो हैट्स ऑफ टू किम लेकू डेपिना जिसने आज चौथा स्थान लिया. एक लंबा रास्ता, लंबी रेस, सबसे लंबी रेस 171.9 किलोमीटर. इसमें डच साइकिलिस्ट डेमी वोलेरिंग आठवां चरण जीत गई एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी पूरा क्लासिफिकेशन सामने नहीं आया है. मोस्ट प्रोबेबली डेमी वोलेरिंग ही आज के इस रेस के बाद वही येलो जर्सी पहन पाएगी. कल जो है शॉइलीजे में जस्ट फॉर सम्मान के लिए होता है और उसमें कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है. सो

0: इट्स टॉप 10 में आना ही फॉर ए साइकिलिंग फॉर साइक्लिस्ट हमारे देश की. दैट्स ग्रेट ग्रेट न्यूज. एंजॉय.
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: 38 सेकंड, ओनली 38 सेकंड बस चुक गई फर्स्ट पोजीशन पे डेमी वोलरिंग फ्रॉम हॉलैंड, वो 4 घंटे 2 मिनट और 39 सेकंड में ये रेस पूरा कर पाई। सेकंड पोजीशन पे इटली की एलिजा लोंगो बोर्गिनी, हाँ लंबोर्गिनी पता है, एलिजा लोंगो बोर्गिनी सेकंड पोजीशन पे आई प्लस 17 सेकंड। तीसरे स्थान पर कल की विजेता पोलैंड की कतरजिना न्यूयाडुमा प्लस 17 सेकंड। सो मोस्ट प्रोबेबली कतरजिना और डेमी वोलरिंग के बीच ये फाइनल स्टेज लड़ा जाएगा। एंड फोर्थ पोजीशन पे मॉरिशस की अपनी हमारी चैंपियन किम लेकू डे पिना प्लस 38 सेकंड। उसके बस बगल में लोट कोपे की पांचवें स्थान पर, सारा वान डाम वो भी प्लस 38 सेकंड, अगेन प्लस 38 सेकंड, डोमिनिका यूडोसिक एंड नोएमी रुएग आठवें स्थान पर, नौवें पर पोला ब्लासी एंड सिद्रिन केबाउल दसवें पोजीशन पर। कुल मिलाकर अभी के लिए जनरल क्लासिफिकेशन में सो एक कदम आगे बढ़ पाई है किम लेकू डे पिना, हार्दिक बधाई। अभी के लिए वो 9th पोजीशन पे है एंड टुमोरो शोइलीजे में ये रेस समाप्त हो जाएगी। सो हैट्स ऑफ टू किम लेकू डे पिना। बात कर रहे थे और आज के मैच को लेकर, मैच में अभी तक खेल का ये 90th minute being played and do we have a development? Kya kuch hai? Manchester United versus Paris Saint-Germain ko lekar 93rd minute, still Paris 1 Manchester United 1. Bata de ki United ka agla match jo hoga wo 12 August ko hai against Leeds United. Ye match Croke Park Dublin mein khela jayega. और यूनाइटेड की बात हुई तो ऑफ कोर्स आप लिवरपूल के बारे में जानना चाहेंगे। लिवरपूल का अगला मैच कल होगा, कल अगेंस्ट मोनाको, एनफील्ड में ये मैच खेला जाएगा कल शाम 5:30 बजे, लिवरपूल वर्सेस मोनाको। आखिरी मुकाबला 16 अगस्त को लिवरपूल वर्सेस कुमु। और बाकी जो टीमें हैं, चेल्सी के लिए आज उसकी जीत हुई 3-0 से अगेंस्ट एसी मिलान। अब अगला मैच 11 अगस्त को खेला जाएगा बिटवीन मलेशियन टीम जोहोर दाहुल ताजीम, सुल्तान इब्राहिम स्टेडियम जोहोर मलेशिया में ये मैच खेला जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आर्सेनल के लिए, कल आर्सेनल खेलेगा बोरुशिया डॉर्टमुंड के खिलाफ एमिरेट्स स्टेडियम लंदन में, और 12 अगस्त को आर्सेनल वर्सेस कुमु। एंड 16 अगस्त की रात द एफए कमिटी शील्ड में इट्स गोइंग टू बी आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, द कर्टेन रेजर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग न्यू सीजन।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
2: RM2, Radio Musti.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: दिल को झंकृत करने वाली खबर है क्योंकि आज किमले कू डेफिना चौथे स्थान पर आई केवल

अच्छा ये गाना है ऋषि विदेशी की ओर से, हैप्पी टू हियर न्यूज फ्रॉम फुटबॉल एंड टू डे फ्रांस, ए रॉकिंग सैटरडे, एंड खासतौर पे आपकी गर्लफ्रेंड के लिए, जो इस समय आपकी मूडी गर्लफ्रेंड के लिए, बॉबू, सो मूड को ऑन करने के लिए, मूड को बनाने के लिए दिस वन फॉर यू।

Guerra है. Manchester United 1, Paris Saint-Germain 1, its full-time result. बधाई, congratulations to Kim Leku de Pinar, जो आज चौथे स्थान पे आई. And overall, 9th position. Thank you, Mauritius का नाम विश्व भर में ऊंचा करने के लिए. कल सुबह फिर मिलेंगे, शॉप at 7:30 AM on Radio Masti RM2. तब तक, नमस्कार और शुभ रात्रि.

गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती। हे गाइस, मैं हूँ वेदिता, आपका साथ देने आई हूँ आपके अपने रेडियो मस्ती पर, आपके अपने लेट नाइट ग्रूव्स में। तो ग्रूव करने के लिए अगर आप लोग रेडी हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड।

आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगे, लेकिन हमारे गीतों के साथ आपके होश भी उड़ाएंगे। नमस्कार जी, मैं हूँ विदिता, साथ दे रही हूँ आपके आपका अपना लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती। कैसे हैं आप? अगर ठीक भी नहीं है तो ठीक करने आए हैं।

आकाशवाणी हूँ और ये सच है कि आपका बेटा गे है।

खूबसूरत गीतों का मजा ले रहे हैं आप और हम डांस करने का अगर मूड बन गया है, चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे आप कहीं से भी साथ दे रहे हो, भाई अगर पैर

जानती हूँ ये जो गुड फील गुड फैक्टर होता है ना, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन जिनको भी मिलता है ना म्यूजिक के साथ, वो हमेशा खुश रहते। तो आप भी खुश रहिए हमारे गीतों के साथ, झूमते चलिए।

Well, if you're celebrating your birthday today, हमारी रेडियो मस्ती टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे. इसी के साथ मैं वेदिता आपको विश करती हूँ बहुत बहुत सारा प्यार. टाइम टू कंटिन्यू विद द ग्रेट म्यूजिक एंड योर सेलिब्रेशन. अरे पार्टी

अगला गाना सुनकर आप नाचेंगे जरूर, ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। व्हाट डू यू मीन? अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग बैठे थे और हिचकिचा रहे थे, थोड़ा सा

लाइफ में ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो एक म्यूजिकल ब्रेक क्यों ना हो. पता है कभी कभी एक अच्छा म्यूजिक लगा के थोड़ा सा डांस करके पूरा हमारा मन हल्का हो जाता है और साथ ही साथ दिमाग भी ठंडा हो जाता है. तो आप भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं आप लोग थोड़ा ठंडा करते हैं.

लाइफ में ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो एक म्यूजिकल ब्रेक क्यों ना हो. पता है कभी कभी एक अच्छा म्यूजिक लगा के थोड़ा सा डांस करके पूरा हमारा मन हल्का हो जाता है और साथ ही साथ दिमाग भी ठंडा हो जाता है. तो आप भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं आपको भी थोड़ा ठंडा करते हैं हम हमारे गीतों के साथ.

लाइफ में ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो एक म्यूजिकल ब्रेक क्यों ना हो. पता है कभी कभी एक अच्छा म्यूजिक लगा के थोड़ा सा डांस करके पूरा हमारा मन हल्का हो जाता है और साथ ही साथ दिमाग भी ठंडा हो जाता है. तो आप भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं आपको भी थोड़ा ठंडा करते हैं हम हमारे गीतों के.

एक बार मुस्कुराना जरा, देखूं तो ये मुस्कुराहट कैसी लगती है। अरे वाह, मैंने मुस्कुराने को कहा, आपने तो हमें लाफ्टर ही दे दिया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ट्यूनिंग इनटू रेडियो मस्ती। और अगला गाना जो है पक्का, उसके साथ मैं शो होके जो लोग अभी खामोश बैठे थे वो भी गाने लगेंगे और झूमने लगेंगे। थैंक यू सो मच हमें अपने दिल में जगह देने के लिए। लेट्स कंटिन्यू विद सम ग्रेट म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती।

पार्टी चल रही है घर पे या पार्टी चल रही है कहीं बाहर या तो फिर आपकी पार्टी आपकी गाड़ी में होती है. हाँ जी, कितने सारे लोग हैं उनके लिए पार्टी होती है लॉन्ग ड्राइव और गुड म्यूजिक एंड कभी कभी लाउड म्यूजिक. ज्यादा लाउड मत चलाना, अंकल ने रोक लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे. चलो अपना ख्याल रखना, स्पीड लिमिट पर भी ध्यान रखना जो लोग गाड़ी चला रहे हो, ठीक है. हमारा काम है आपको एंटरटेन करना, एंटरटेन करो और बस खुश रहो.

धीरे धीरे देख रही हूँ कि वक्त कह रहा है कि अब तुम्हारे जाने का टाइम हो रहा है। वेदिता क्या कर रही हो? मैं मैजिक करने की कोशिश कर रही हूँ, लोगों को हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, उनके होंठों पे मुस्कान लाने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ तक कामयाब रही ये तो नहीं जानती, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ मेरे जाने के बाद यार

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।